आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है।

0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले नमन करते हैं अपनी मातृभूमि को।

श्रोताओं, आइए गौरी पुत्र श्री गजानन का स्मरण करें, उन्हें नमन करें, उनकी चरण वंदना करें।

श्रोताओं, जहाँ प्रेम होता है वहीं सागर बहता है, प्रभु भी वहीं बसते हैं और वहीं रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आपने जो स्वर सुने वो स्वर थे मोहम्मद रफी, आशित देसाई, हेमा देसाई और श्रुति शिटोलकर के। इन्हीं भक्ति रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। चिंतन के तहत आइए सुनते हैं आचार्य नरेंद्र देव के विचार।
1: प्रख्यात शिक्षाविद, वकील एवं चिंतक आचार्य नरेंद्र देव 20वीं सदी के मध्य में अपने सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधारा के कारण ही प्रसिद्ध हुए। उनकी गणना भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की अग्रणी पंक्ति में की जाती है। उन्हें भारत में प्रजातांत्रिक समाजवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है, जिसमें उन्होंने राष्ट्र में प्रस्फुटित हो रही नवराष्ट्रीयता की भावना एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों में काल मार्क्स की विचारधारा को बौद्ध धर्म की चिर प्रचलित शिक्षाओं का समावेश करने का अनूठा प्रयोग करने का प्रयास किया। इस कार्य में उनके सहयोगी प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक अध्येता जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही समाजवादी दल की स्थापना करने की विचारधारा को प्रचारित एवं प्रसारित किया। वह उच्च कोटि के शिक्षाविद एवं विद्वान व्यक्ति थे और इसी कारण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में 4 वर्षों तक शिक्षा सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर उन्होंने नव स्वतंत्र राष्ट्र की शिक्षा पद्धति में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। वह पूर्व शक्ति एवं सामर्थ्य के साथ राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान एवं समुचित स्थान दिलाने के लिए राष्ट्रभाषा आंदोलन के लिए अग्रणी पंक्ति में नेतृत्व करते हुए सदैव तत्पर रहे। आचार्य जी ने अपने चिंतन की दिशा क्रांतिकारी पद्धति में न प्रयोग के रूप में सत्याग्रह के मार्ग का प्रयोग कर महात्मा गांधी से प्रभावित हो हिंसा एवं उग्रवाद का प्रत्याग कर सिद्धांत रूप में उसे अंगीकार किया, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी परिवर्तन को सामाजिक राजनीतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में वह महात्मा बुद्ध के प्रतिपादित अहिंसा एवं सत्याग्रह के मार्ग द्वारा ही अपना कर अपने लक्ष्य एवं मंतव्य को पूर्ण करने का अनूठा संकल्प रखते थे। जिस समाजवादी विचारधारा को वह कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मंच से प्रारंभ कर आगे बढ़े, वो तत्कालीन समय में अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित प्रतीत होती है। उनके चिंतन को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा आधुनिक साम्यवादी चिंतक कार्ल मार्क्स ने सर्वाधिक प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने संकल्प लिया कि समाज एवं राष्ट्र से दरिद्रता एवं शोषण जैसे अभिशाप का उन्मूलन कर मार्क्स की विचारधारा के अनुरूप नव सामाजिक संरचना का सूत्रपात हो, जिसे वह महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के आधार पर प्रतिपादित कर सकें। उनका स्पष्ट मत था कि बिना राजनीतिक प्रजातंत्र के सामाजिक समता एवं सार्वभौमिक भ्रातृभाव की कल्पना करना भी असंभव है, जिसे अकल्पनीय ही माना जाएगा। आचार्य जी ने समाज के सर्वहारा वर्ग एवं किसानों की स्थिति को अत्यंत ही शोचनीय एवं दयनीय अवस्था में देखा और जाना, इसलिए उन्होंने उनके आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी का निर्वाह किया तथा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाला, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा एवं उनके उपेक्षित बहुसंख्यक विपन्न समुदाय के प्रति लगाव एवं निकटता का परिचायक है। उनकी प्रखर विचारधारा एवं चिंतन का एक अन्य स्वरूप उनकी आंशिक नास्तिकता के रूप में भी देखा जा सकता है। वह मानव मात्र की गरिमा तथा उच्चता के प्रखर

0: समर्थक रहे। सारांश में कहा जा सकता है कि आचार्य नरेंद्र देव बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, विधि तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में अपने अनूठे तथा नवीन चिंतन द्वारा राष्ट्र एवं समाज को एक क्रांतिकारी तथा मौलिक दिशा प्रदान की।
1: श्रुतों, चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे आचार्य नरेंद्र देव के विचार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है। हमारी आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण अब से कुछ ही समय में यानी प्रातः 6:35 पर आप सुन सकेंगे। श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार होंगे सुरेश वाटकर। प्रातः 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे डॉ आर सी यादव की लघु वार्ता, विषय होगा कृषि यंत्रों में रखरखाव में सावधानियां। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर डॉ वाणी अग्रवाल जानकारी देंगी आंखों के लिए पोषण का महत्व विषय पर। प्रातः 7:31 पर सुनिएगा स्थानीय गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। सुबह 8:45 पर सुनिएगा सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। सुबह 9:25 पर आप सुन सकेंगे पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत मंजूषा। सुबह 9:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे रागिनी, कलाकार रागिनी को। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता, इसका आनंद आप ले सकेंगे सुबह 10:00। सुबह 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा विदुषी गिरजा देवी से राग देवगंधार में ख्याल गायन। सुबह 11:00 प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसमें आज के कलाकार होंगे अभिनेता जीवन। सुबह 11:30 पर सुनेगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें आज का विषय होगा जल जीवनदायक है इसे व्यर्थ ना करें। दोपहर 12:00 प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा नए तराने नई फिल्मों से। दोपहर 1:15 पर प्रसारित किया जाएगा बहनों का अपना कार्यक्रम घर संसार, जिसमें चर्चा का विषय होगा आंखें हैं अनमोल, मेरी माटी मेरा देश सेगमेंट में बात की जाएगी उत्तर भारत की प्रसिद्ध लोक कलाएं विषय पर। मुझे कुछ कहना है सेगमेंट में जानकारी दी जाएगी पॉश एक्ट के संबंध में। साथ ही सुनवाई जाएगी कहानी पारुल मित्तल से विश्वास की डोर। दोपहर 1:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार होंगी रानू मुखर्जी। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत, जिसमें कलाकार होंगी विदुषी शोभा गुरटू। दोपहर 2:45 पर सुनिएगा पुरानी फिल्मों से कुछ गीत, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में।

सांध्यकालीन सभा में शाम 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें चर्चा का विषय होगा संवाद से सद्भाव। साथ ही सुनवाई जाएगी यशवी की उपाध्याय से वार्ता, विषय होगा सभ्यताओं के बीच संवाद की अनिवार्यता आवश्यक। आइए जाने सेगमेंट में जानकारी दी जाएगी शांग्रीला डायलॉग पर। जीने की कला सेगमेंट में बात की जाएगी सकारात्मक मनोवृत्ति के संबंध में। शाम 6:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम्य लोग, जिसमें चर्चा का विषय होगा मिश्रित खेती है जहां, उन्नति है वहां।

साथ ही सुनवाई जाएगी डॉक्टर आरपी अग्रवाल की वार्ता, जिसका विषय होगा कैसे बने सफल कृषि उद्यमी। शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम मजदूर मंडल, जिसमें चर्चा का विषय होगा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही सुनिएगा हरीश कुमार भदौरिया से काव्य पाठ। शाम 7:10 पर विविधा

शाम 7:31 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। रात्रि 8 बजे सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। रात्रि 8:30 पर सुनेगा चित्रपट संगीत। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे पंडित जसराज से राग धुलिया मल्हार में ख्याल गायन। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेंढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धानत हो पति के वचन सुनने लगीं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे सुरेश वाडिकर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर आरसी यादव की लघु वार्ता कृषि यंत्रों में रखरखाव में सावधानियां विषय पर।
1: स्थानित व स्थानांतरित यंत्रों में विभिन्न प्रकार की शक्ति का उपयोग करके कृषि के कई उपयोगी कार्य किए जाते हैं। कुछ यंत्र में पट्टे व पुली का तथा कुछ यंत्रों में चेन व स्प्राकेट का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त गियर, कैम व कपलिंग का भी उपयोग होता है। स्वचालित कंबाइन में इन विभिन्न शक्ति का स्थानांतरण की उपकरण व विधि का उपयोग होता है। कुछ उपकरणों में चक्रीय घुमाव का बदलाव लाइन में या आगे पीछे चलाने में उपयोग किया जाता है। कृषि कार्य में विभिन्न यंत्रों का उपयोग होता है। सभी यंत्रों में एक न एक प्रकार के लीवर का प्रयोग किया जाता है। लीवर के उपयोग से कार्य करने में आवश्यक शक्ति की बचत होती है, अर्थात भारी कार्यों को कम शक्ति से आसानी से किया जा सकता है। कृषि कार्य में जुताई, बुआई, निकाई, पौध संरक्षण, कटाई, मड़ाई तथा प्रोसेसिंग इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग होता है। कार्य अनुसार, इसके पार्ट्स तथा चालित शक्ति के अनुसार उसमें पट्टा, पुली, चैन, स्प्राकेट, केम, गियर इत्यादि का प्रयोग होता है। शक्ति स्थानांतरण में उपयोगी पार्ट्स तीव्र चलने वाले होते हैं, अतः उनमें घिसाव व तोड़फोड़ अधिक होता है। इन तीव्र गति से चलने वाले भागों का रखरखाव अति ध्यानपूर्वक किया जाता है। इनमें नियमित रूप से ग्रीस, मोबिल, सफाई व धुलाई आवश्यक होती है। सर्विसिंग में स्थानांतरण में आने वाली शक्ति का नुकसान नहीं होता है। कृषि कार्य मौसम के अनुसार होते हैं, अतः प्रथम रखरखाव की बातों का विवरण इन यंत्रों से प्रारंभ किया जा रहा है। मड़ाई यंत्र, पौधों से दाने निकालने के लिए पीटकर, दबाकर व घिसाई की आवश्यक प्रक्रिया को मड़ाई कहा जाता है। आजकल मड़ाई के लिए थ्रेसर यंत्र का उपयोग होता है। यह यंत्र ट्रैक्टर पावर या बिजली से चलाए जाते हैं। इन मशीनों को खलिहान से खलिहान तक ले जाकर मड़ाई का कार्य अतिशीघ्र निपटा लिया जाता है। इन मशीनों को चलाने के लिए 3-4 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। गेहूं इत्यादि को मशीन में डाला जाता है, जिससे दाना व भूसा अलग अलग जगहों पर निकलता है। इस यंत्र को समुचित रूप से चलाने के लिए यंत्र की देखभाल व कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए सावधानी अति आवश्यक है। थोड़ी सी असावधानी होने पर गंभीर खतरा हो जाता है। इन यंत्रों के सभी पार्ट्स की सफाई, ग्रीसिंग व तेल इत्यादि लगाना आवश्यक है। तीव्र गति से चलने वाले पार्ट्स पर सुरक्षा के लिए गार्ड लगाना अति आवश्यक है। मड़ाई यंत्र के अतिरिक्त दाने को भूसे से और अच्छे ढंग से साफ करने के लिए हस्तचालित अथवा पैर चालित विनोइंग फैन का उपयोग किया जाता है। इन पंखों में रखरखाव की सावधानी, पंखों की पत्तियां व का प्रारूप न बिगड़ना, फैन बेल्ट का सुचारू रूप से ठीक रहना तथा वायरिंग में ग्रीजिंग इत्यादि होने आवश्यक है। इसके अलावा चलते समय उसके आसपास बच्चों अथवा जानवरों का सावधान रहना अति आवश्यक है। कृषि यंत्रों में एक प्रमुख स्थान चारा काटने की मशीन का है। यह हर मौसम में उपयोग में आती है। यह चारा कटिंग मशीन दो तरह की होती है, जिसको सिलेंडर टाइप व फ्लाईव्हील टाइप कहा जाता है। चलाने वाले पावर सोर्स के आधार पर हस्तचालित, बैल चालित अथवा शक्ति चालित कहा जाता है। नियमित रूप से इसके ब्लेड में धार, ग्रीसिंग, गियर, दांते आदि टूटने पर नए पार्ट्स, मरम्मत इत्यादि से उसमें होने वाली शक्ति के नुकसान से बचाया जा सकता है।

0: है। इन यंत्रों की मुख्य बातें होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका से बचना है। जब भी चारा काटने की मशीन चलने लगे, हमेशा सावधानी को पहला महत्व देना चाहिए। यंत्र में चारा डालना, उसके साथ धूल आदि से बचाव व कटे हुए चारे को दूर करने के में सावधानियां अति आवश्यक हैं। दुर्घटना संभावित भाग के पास गार्ड लगाना एक विशेष सावधानी है। चारा काटने की मशीन की सावधानियां। मशीन कार्य में लाने से पहले उसमें लगे गियर व बेयरिंग को लुब्रिकेंट दिए जाते हैं। यंत्र की ब्लेड को हाथ की फाइल से फाइलिंग की जाती है। ढीले नट बोल्ट को कस देने से दुर्घटना से बचा जाता है। कम से कम एक बार प्रतिवर्ष उसकी पूरी मरम्मत कर लेनी चाहिए। यंत्र को छाए में ही लगाना चाहिए। फ्लाई व्हील अथवा लोहे की बनी होती है, जो कि हैमर आदि के चोट से टूटने में संवेदनशील है। स्प्रेयर व डस्टर। स्प्रेयर विषैली दवाओं को छिड़काव के बाद पानी से अच्छी धुलाई करके सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। स्प्रे नाजिल को पूरी तरह से साफ करके सेटिंग कर लेना चाहिए। साल में उपयोग करने से पहले नाजल की सफाई व सेटिंग अति आवश्यक है। स्प्रेयर की तरह डस्टर का भी उपयोग के बाद अच्छी सफाई की आवश्यकता है। जुताई के यंत्र। जुताई के यंत्र शक्ति के उपयोग के अनुसार बैल चालित अथवा ट्रैक्टर पावर चालित होते हैं। बैलों के पीछे चलने वाला व्यक्ति एक हेक्टेयर की जुताई करने में बैलों के पीछे लगभग 64 किलोमीटर चलता है। अतः यह थकावट देने वाला कार्य है। आजकल कृषि कार्य में ट्रैक्टर द्वारा जुताई का कार्य किया जाने लगा है। ट्रैक्टर चालित यंत्र तीन प्रकार के होते हैं, जो कि एक हिच से खींचे जाते हैं जो ट्रैक्टर से संयुक्त हो हैं, तथा भारी वजन संभालने के लिए पीछे पहिया लगा रहता है जो ट्रैक्टर से इस तरह जुड़ जाता है कि उसी का एक भाग प्रतीत होता है। प्राथमिक हल बैलों द्वारा चलाया जाता है। उसके हत्थे व हरीज के बीच में त्रिकोण को कम या अधिक करके गहराई घटाई बढ़ाई जाती है। इस हल की मरम्मत गांव में ही हो जाती है। मोलबोर्ड प्लाव मिट्टी पलटने का कार्य करते हैं। इन हलों का उपयोग खरपतवार व हरी खाद पलटने के लिए है। कम नमी अथवा पथरीली जमीन में मिट्टी पलटने का कार्य डिस्क प्लाव द्वारा किया जाता है। डिस्क एंगल व वर्टिकल एंगल के द्वारा डिस्क हल की गहराई बढ़ाई व घटाई जाती है। मोल्डबोर्ड प्लाव में फाल व लैंडस्लाइड की पट्टी भी घिस जाती है, जिसको बदलना पड़ता है। किसान भाइयों, ट्रैक्टर द्वारा चलित हल में लुब्रिकेंट लगाने पड़ते हैं। जुताई के मौसम प्रारंभ होने से पहले उसकी मरम्मत करा लें। काटने वाले भाग को तेज करा लें। टूटे हुए पार्ट्स का मरम्मत कराएं। नट बोल्ट इत्यादि यदि खो गए हैं तो उसको स्पेयर पार्ट्स खरीदकर अवश्य लगा लें। बरसात का मौसम निकट भविष्य में आता है, अतः अपने यंत्रों को कार्य पूर्ण करके रखें, जिससे बरसात आते ही खेती की जुताई व बुआई कम समय में आसानी पूर्वक कर सकें। बरसात वाली फसलों के लिए बुआई का समय बहुत सीमित होता है, अतः कृषि यंत्र की रखरखाव पूरी तरह करने से कम समय में खेती का कार्य पूरा कर सकेंगे। खेत में ढेले इत्यादि तोड़ने के लिए हैरो का उपयोग होता है। उसमें मुख्य रूप से लुब्रिकेशन का होना अति आवश्यक होता है।
1: श्रोताओं, का अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में जानकारी दे रहे थे डॉ. आरसी यादव, कृषि यंत्रों में रखरखाव में सावधानियां विषय पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज जानकारी दे रही हैं डॉक्टर वाणी अग्रवाल आंखों के लिए पोषण का महत्व विषय पर।
1: आंखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनके पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। आंखों को आजीवन स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। सामान्यतः आंखों का पोषण गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। नवजात शिशु की आंखें स्वस्थ हों, इसके लिए मां को संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, जिसमें हरी साग सब्जियां, गाजर, फल, गुड़ एवं दूध प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। खाना हो सके तो लोहे की कढ़ाई में पकाएं। जन्म के बाद 4 माह तक नवजात शिशु के लिए स्तनपान सबसे संतुलित आहार है। यदि किसी वजह से मां स्तनपान कराने में असमर्थ है तो बच्चे को डिब्बे का दूध दे सकते हैं या ताजा दूध बिना पानी मिलाए देना चाहिए। स्तनपान के दिनों में मां को भी अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे को दस्त लग जाएं, तो उसे अतिरिक्त विटामिन ए की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लें। विटामिन ए की कमी से आंखों के आगे का पर्दा यानी कॉर्निया सूख जाता है और इसमें जख्म होने से आंखों की रोशनी जा सकती है। 4 महीने के पश्चात स्तनपान के साथ साथ शिशु को दाल सब्जी, केला, सूजी की खीर इत्यादि भी देना शुरू कर दें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए तो उसे घर में बना हुआ सभी खाना देना शुरू कर दें। बच्चे को फल, हरी साग सब्जियां, गाजर, अंडा, दूध अवश्य दें। जहां तक हो सके आज के युग के फास्ट फूड आदि खाने से बच्चे को रोकें। अगर बच्चा इसी से पेट भर लेगा तो आवश्यक तत्व उसके शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आंखों में कई बदलाव आते हैं, मोतियाबिंद, पर्दे की बीमारियां इत्यादि होने लगती हैं। इन सब से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। यह चीजें हरी साग सब्जियों एवं ताजे फलों में पाई जाती हैं। इसलिए वयस्क लोगों को भी दिन में 2-3 बार इसका सेवन करना चाहिए। तंबाकू एवं शराब के सेवन से विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिससे आंखों की नसें तथा पिछले पर्दे पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए इनके सेवन से परहेज करें। कई भाई बहन आजकल डायबिटीज एवं उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं। यह बीमारियां आंखों के भीतरी पर्दे को क्षति पहुंचाती हैं। डायबिटीज होने के 15-20 वर्ष बाद 80% लोगों की नजर में फर्क पड़ने लगता है। आधुनिक इलाज एवं इंसुलिन के प्रयोग से मधुमेह के मरीजों की उम्र काफी बढ़ गई है। आंखों की नियमित जांच, मधुमेह का सही इलाज एवं उपचार तथा खान पान में परहेज बहुत जरूरी है। मधुमेह में मीठे खाद्य पदार्थ, शक्कर, मिठाई तथा मीठे फलों का पूरी तरह परहेज करना चाहिए। वजन को नियमित करने के लिए चिकनाई कम से कम लें तथा उचित व्यायाम जरूर करना चाहिए। उच्च रक्तचाप होने पर शरीर का वजन कम करना चाहिए तथा उचित इलाज के साथ साथ नमक का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। संतुलित आहार ना लेने से मोतियाबिंद कम उम्र में ही आ जाता है। खून की कमी जो महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, इसमें भी मोतियाबिंद कम उम्र में देखा जाता है। खून की कमी से पर्दे पर भी असर पड़ता है और नजर कम हो जाती है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी खुराक पर नियमित ध्यान दें ताकि हमारी आंखें आजीवन स्वस्थ रहें।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी जानकारी दे रही थी डॉक्टर वाणी अग्रवाल आंखों के लिए पोषण का महत्व।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवित स्वर में देश गान। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।

0: लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कल 12 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पंथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई प्रमुख लोगों ने बधाई दी। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने कहा के कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जय प्रकाश शिव

0: खरे ने कल लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है।
1: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास एक और जन विश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष के वर्ष पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए एक बिग टाइम लिया जा रहा है।
0: रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की इस पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश में प्रस्तावित सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: एक अन्य बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए कल लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को प्रस्तावित नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। बीच बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाजवादी चिंतक स्वर्गीय गौरी शंकर राय की आज 102वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर बलिया जिले के करनई स्थित गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा

0: की परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर।

श्रोताओं प्रस्तुत है स्थानीय गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी सुनैना। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, आज है 10 जून। आज के दिन हम एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो एक बहुत ही मनोरम कवि हुआ करते थे, वक्ता हुआ करते थे, गीतकार थे, दार्शनिक भी थे, गायक और एक असाधारण क्रांतिकारी भी थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री दुक्कीराला गोपाल कृष्णैया की, जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और दक्षिणी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। वे अखिल भारतीय के सचिव बनने वाले पहले आंध्र नेता थे। आंध्र में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनके अनुकरणीय कार्यों और बलिदानों के लिए उन्हें प्यार से आंध्र रत्न नाम से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, गोपाल कृष्णैया का जन्म 2 जून सन 1889 में कृष्णा जिले के नंदीगामा तालुक के पेनो गच्ची प्रोलू के में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कोडा रामास्वामी एक स्कूल शिक्षक थे, लेकिन गंटूर के जमींदारों के परिवारों से आते थे। उनके जन्म के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई और जब वे छोटे ही थे तब उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनके चाचा और दादी ने किया। 1911 में उन्होंने अपने बचपन के दोस्त श्री नदीम पल्ली नरसिम्हा राव के साथ एडिनबर्ग विश्वविद्यालय जाना चुना, जहां वे 6 साल तक रहे और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री भी हासिल की। 1920 में कलकत्ता कांग्रेस सत्र में भाग लेने के बाद वे असहयोग और सत्याग्रह के सिद्धांतों से आकर्षित हुए और स्वराज की उपलब्धि के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। गंटूर में रहते हुए वे एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1919 में उन्होंने पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता बनने के लिए अपना शिक्षण कैरियर छोड़ दिया। श्रोताओं, गोपाल कृष्णैया राम भक्त थे और उन्होंने स्वराज के लिए काम करने के लिए कार्यकर्ताओं के एक कैडर का आयोजन किया, जिसे उन्होंने राम दंडू कहा। गोपाल कृष्णैया को असहयोग आंदोलन के दौरान चिराला में

कर विरोधी सत्याग्रह के लिए जाना जाता था। सत्याग्रह की जड़ें मद्रास प्रेसिडेंसी की औपनिवेशिक सरकार के गंटूर जिले के चिराला और पेरला गांवों को एक नगर पालिका में मिलाने के फैसले में थी। जनवरी 1921 में निवासियों ने करों या भुगतान न करने का फैसला किया और सरकार ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार

कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाकर कारावास की सजा देकर बंद कर दिया। शतुल बेजवाड़ा कांग्रेस सत्र के बाद गांधी जी ने चिराला का दौरा किया, जहां गोपाल कृष्णैया ने भविष्य की कार्यवाही के बारे में उनकी सलाह मांगी। गांधी जी ने एक अहिंसक संघर्ष जारी रखने और शहर की सीमा से परे क्षेत्रों में जन आंदोलन की सलाह दी। गोपाल कृष्णैया और राम दंडू ने लोगों के मनोबल को बनाए रखने के लिए काम किया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कांग्रेस पार्टी में अपनी भावी कार्यवाही के मुद्दे पर असंतोष फैल गया। 1925 में जब सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की तो गोपाल कृष्णैया इसमें शामिल हो गए। रामदंडू के साथ अपने काम और रामनगर की स्थापना के लिए उन्हें रामदास के रूप में जाना जाने लगा। गोपाल कृष्णैया एक शक्तिशाली वक्ता भी थे। उन्होंने एक साहित्यिक समाज आंध्र विद्यापीठ गोष्ठी की स्थापना की, लेकिन उन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा पर अपने राजनीतिक जीवन को प्राथमिकता दी। 10 जून यानी आज ही के दिन 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, सम्मान, एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देना है। 7 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा इसे मनाने का संकल्प पारित किया गया था। इसे पहली बार वैश्विक स्तर पर 10 जून 2025 को मनाया गया। इस दिन की स्थापना का प्रस्ताव चीन द्वारा पेश किया गया था और 80 से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया था। वर्तमान समय में बढ़ते हुए विभाजन और वैश्विक संकटों के बीच यह दिन सभ्यताओं के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करता है, जिसे भेदभाव और पूर्वाग्रहों को दूर करके शांति और वैश्विक एकजुटता स्थापित की जा सके। यह सभ्यतागत विविधता का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित करता है और वैश्विक शांति बनाए रखने, साझा विकास को आगे बढ़ाने, मानव कल्याण को बढ़ाने और सामूहिक प्रगति हासिल करने में बातचीत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश भी डालता है।

श्रोताओं, कहते हैं बातचीत एक ऐसा जरिया होता है, संवाद करना एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी समस्या हो उसका हल निकाला जा सकता है। हर साल

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। सोनी कुमारी पुत्री सोमवीर निवासी हसनपुर थाना भोगांव जनपद मैनपुरी से दिनांक 25 अप्रैल 2026 से लापता हैं। सोनी कुमारी की उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा, शरीर सामान्य है। गुमशुदगी के समय ये लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। सोनी कुमारी के विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया थाना भोगांव जनपद मैनपुरी को सूचित करें।

अनुसूचना के अनुसार राधा पत्नी अहिवरण सिंह निवासी रकरी थाना भोगांव जनपद मैनपुरी से दिनांक 26 अप्रैल 2026 से लापता हैं। राधा की उम्र 27 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल, शरीर सामान्य है। गुमशुदगी के समय ये गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। राधा के विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया थाना भोगांव जनपद मैनपुरी को सूचित करें।

अंतिम सूचना के अनुसार बबली पुत्री सोबरन सिंह निवासी बहादुरपुर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी से दिनांक 31 मार्च 2026 से लापता हैं। बबली की उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल, शरीर सामान्य है। गुमशुदगी के समय ये नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बबली के विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

श्रोतो, अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत 910 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लिखित पुनर्परीक्षा का परिणाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को घोषित कर दिया। परीक्षाफल आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। इसमें सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का कार्यक्रम जुलाई मध्य में जारी किया जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी मुख्यालय का मंगलवार को दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा सामग्री को केंद्रों तक समय पर पहुंचाने और पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक भी आयोजित की गई। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर

परीक्षा के निष्पक्ष आयोजन के लिए पहले से भी ज्यादा सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है। आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह सचिव भी इस विषय पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि परीक्षा से जुड़े किसी भी साइबर खतरे से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो समेत सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को सक्रिय किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी टीम और तैयारियों पर पूरा भरोसा है और नीट परीक्षा को सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और नेशनल मेडिकल कमीशन के वरिष्ठ अधिकारी बुधवार को यानी आज नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की जानकारी संसदीय समिति को देंगे।

श्रोताओं, रेलवे ने साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। पीआरओ ने बताया कि गाड़ी संख्या 04139 04140 प्रयागराज दादर 22 मई से 10 जुलाई तक हर शुक्रवार और दादर से 24 मई से 12 जुलाई तक हर रविवार को चलेगी। ट्रेन प्रयागराज से शुक्रवार शाम 5:10 पर चलकर देर रात 1:20 पर ईदगाह स्टेशन और शनिवार को रात 10:40 पर दादर पहुंचेगी। ट्रेन दादर से रविवार को रात्रि 12:15 पर चलकर रात 7:10 पर ईदगाह स्टेशन पर व अगले दिन सुबह 5 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। ट्रेन में 8 जनरल, 9 स्लीपर, 4 एसी थर्ड, 1 एसी सेकंड कोच लगे होंगे।

श्रोताओं, हर साल 10 जून को विश्व नेत्र दान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को नेत्र दान के प्रति जागरूक करना और मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में रोशनी लाने के लिए प्रेरित करना है। भारत में आज भी लगभग 12 लाख लोग कॉर्नियल अंधेपन से पीड़ित हैं, जिन्हें प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। श्रोताओं, आपका एक छोटा सा संकल्प किसी के जीवन से अंधेरा दूर कर सकता है। मृत्यु के बाद केवल 6 से 8 घंटे के भीतर कॉर्निया निकालना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप अपनी इच्छा से किसी भी नजदीकी आई बैंक में जाकर आई डोनर के रूप में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा नेत्रदान के लिए एक आसान हेल्पलाइन नंबर 1919, एक बार फिर सुने, 1919 जारी किया गया है। मृत्यु के पश्चात इस नंबर पर कॉल करके निकटतम आई बैंक से संपर्क किया जा सकता है। नेत्रदान कोई भी कर सकता है। उम्र, लिंग या ब्लड ग्रुप की कोई सीमा नहीं होती। यहां तक कि चश्मा लगाने वाले या मोतियाबिंद का सफल इलाज करवा चुके लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति के नेत्रदान स्वीकार नहीं किए जाते हैं। किसी भी स्थिति में परिवार के करीबी रिश्तेदार को तुरंत नजदीकी नेत्र अस्पताल या आई बैंक को सूचित करना चाहिए, ताकि विशेषज्ञ आकर प्रक्रिया पूरी कर सकें। श्रोताओं, नेत्रदान महादान कहलाता है। किसी के जीवन में रंग भर सकता है, रोशनी भर सकता है। आंखें न सिर्फ हमें रोशनी देती हैं, बल्कि किसी और की जिंदगी में उजाला भी कर सकती हैं। नेत्रदान एक ऐसा नेक और पुण्य कार्य है जो किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को दुनिया देखने का अवसर देता है। आज विश्व नेत्रदान दिवस पर नेत्रदान का संकल्प लेकर किसी दृष्टिहीन के जीवन में रोशनी भरें, ऐसा संकल्प लें। आंखें प्रकृति की अनमोल सौगात है जो हमें दुनिया दिखाती है। इंद्रधनुषी रंगों से सजे सपनीले संसार की सैर कराती है। इसकी कीमत वही जानते हैं जो अपनी

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आसपास को यहीं समाप्त करने की अपनी रेडियो साथी सुनैना को अब दीजिए इजाजत। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: आपने पीएम सूट

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर

0: निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में

0: 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्चीव ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्म।

0: के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं, जिसे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हेसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज्यादा नौजवान ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदराबास और किशम जजीरे में धमाके की आवाजें सुनी गई। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अलाकवामी स्टेडियम में तीन मुल्कों की ए टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नवीन ने कहा, भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला। इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफर 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियां।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोबों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये सुदास के स्वर में चितचोर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

श्रोताओं लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है गीता मेरा नाम।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के स्वर में। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर किशोर कुमार के स्वर में, साथ आशा भोसले, शतरचना गुलशन बाबरा और संगीत आरडी बर्मन का, और फिल्म का नाम है ये वादा रहा। तो सुनिए ये खूबसूरत सा गीत फिल्म ये वादा रहा से।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे योगेश की शब्द रचना राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में और फिल्म का नाम था प्रियतमा। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मथुरा और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
1: जनपद मथुरा के प्रभारी एवं प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जन कल्याणकारी एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। यह बैठक वृंदावन स्थित गीता सो संस्थान में आयोजित की गयी। बैठक में 5 जून 2026 से 21 जून 2026 तक चलने वाले समय के जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों एवं कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों तथा जन सामान्य के जीवन में

0: आए सकारात्मक परिवर्तनों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मंत्री संदीप सिंह ने गीता सुसंस्थान परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप सादगी, अनुशासन, ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2026 को जनपद मथुरा में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जनपद में लगभग 6,17,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मथुरा के वन प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी DFO BS पटेल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से जनपद भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मथुरा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 25 प्रमुख धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ब्रज की पवित्रता और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। यहां धार्मिक कुंडों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए 406 ग्राम पंचायतों के तालाबों और 25 धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल के अनुसार जल को दूषित होने से बचाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मथुरा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान दुवासु परिसर में वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और प्रभागीय वन अधिकारी DFO वेंकट श्रीकर पटेल शामिल हुए। यहां कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने बेल, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने आम और DFO वेंकट श्रीकर पटेल ने शहतूत का पौधा लगाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना था। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान दुवासु के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने बताया
1: करीब 384 पौध को लगाया गया। अब हर बच्चे ने, हर फैकल्टी ने अपना माँ के नाम में पौध लगाया है और आगे वाला अगले साल तक उसका देखभाल करेगा।
0: मथुरा चटपट के राया निवासी युवा नेता और सामाजिक नीतीश पाठक ने प्रयागराज में आयोजित युवा संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्हें इस आयोजन में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जिससे उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। युवा संसद सत्र के दौरान नीतीश पाठक ने एक संसद सदस्य की भूमिका निभाते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में उन्होंने नारी को माँ सरस्वती का स्वरूप बताया। पाठक ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण राष्ट्र की प्रगति का आधार है। मथुरा जिला न्यायालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विकास कुमार की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय परिसर में समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश और अन्य न्यायाधिकारी गण द्वारा जनपद न्यायालय परिसर मथुरा में वृक्षारोपण किया गया। जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण की अनीता सिंह द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वृक्षों की उपयोगिता के संबंध में बताया गया तथा सभी से अपील की गई कि साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें।
2: मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का।
3: जिले में इस महीने की शुरुआत जनपद वासियों को समय रहते मौसम संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल के साथ हुई। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे के निर्देशन में जनपद में 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इन आधुनिक स्टेशनों के माध्यम से तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा, वायुदाब जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां वास्तविक समय में प्राप्त की जा रही हैं। इससे मौसम की सतत निगरानी संभव हो सकेगी तथा किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा या मौसम परिवर्तन की स्थिति में प्रशासन समय रहते आवश्यक कदम उठा सकेगा। जनपद में स्थापित 5 ऑटोमेटिक

0: वेदर स्टेशन तहसील सदर कुंडा लालगंज पट्टी एवं रानीगंज में संचालित हैं, जबकि 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन विभिन्न विकास खंडों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा कि मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें तथा आपदा अथवा खराब मौसम की स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल अधिकारी सूचना पर भरोसा करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मौसम एवं वर्षा से संबंधित रियल टाइम डेटा उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आम जन भी सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिले में इस महीने 15 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाली योग सप्ताह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस संबंध में परियोजना निर्देशक DRDA दयाराम यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुमन कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 15 जून से 21 जून तक जनपद में योग सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने योग सप्ताह कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी योग्या अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित कराएं। तहसील ब्लॉक और जिला स्तर पर योग्या अभ्यास कराए जाने की समुचित व्यवस्था योगा संस्थाओं के साथ बैठक कर ली जाए, जिससे योग सप्ताह के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पुलिस लाइन में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, समाज सेवी, व्यापारी व जनपद के अन्य गणमान्य नागरिक व पत्रकार बंधुओं का सामूहिक योग्या अभ्यास कराया जाएगा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में बैठे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बात भारत सरकार के प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने समीक्षा बैठक के दौरान की। जनपद में संचालित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों को मिल रहे लाभ तथा लंबित कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि गरीब, दलित, पिछड़े एवं वंचित लोगों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ गांव और शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार सिंह, संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पंचायत पहुता में इस महीने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 11वीं वाहिनी द्वारा आपदा प्रबंधन एवं बचाव को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी देना रहा। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन के उप निरीक्षक प्रभास सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रशासन एवं राहत एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने लोगों को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के तरीके तथा आपातकालीन सहायता नंबरों की जानकारी भी। कार्यक्रम में CPR देने की प्रक्रिया का डेमो करके दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान NDRF की टीम ने आकाशीय बिजली, डूबने से बचने आदि प्रबंध आपदा से बचाव के व्यवहारिक उपायों का प्रदर्शन भी किया, जिसे ग्रामीणों ने काफी रुचि के साथ देखा और जानकारी प्राप्त की।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत मंजूषा।

श्रोताओं, न्यू दिल्ली फिल्म का ये चुलबुला सा गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत पद किया था शंकर जयकिशन ने। हेमंत कुमार के सुर में आइए अब आपको सुनवाते हैं शकील बंदायूनी की शब्द रचना। संगीत हेमंत कुमार का है और फिल्म का नाम है 20 साल बाद।

अभी आप सुन रहे थे शकील बदायूनी की शब्द रचना हेमंत कुमार के स्वर में। आइए अब आपको एक बार फिर सुनवाते हैं हेमंत कुमार को। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है एसटी बर्मन ने और फिल्म का नाम है सोलवा साथ।

है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना हेमंत कुमार के स्वर में।

माफ़ कीजिएगा, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है इस गीत को SD बर्मन ने और आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी की शब्द रचना। स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। आइए अब आपको सुनाते हैं किशोर कुमार के स्वर में तीन देवियां फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है आशा भोसले ने।

श्रोतो, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजुषा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार है रागिनी, संगत करता है हारमोनियम पर देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नक्कारा पर है ईश्वर सिंह खींची। तो आइए आपको सुनवाते हैं रागिनी की स्वर में कुछ लोकगीत। तो सबसे पहले सुनिए ये लोकगीत जिसके बोल हैं वो छलिया नंद को।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार रागनी के गाए कुछ लोक गीत। आइए अब सुनते हैं अगला लोकगीत जिसके बोल हैं मेरे अंगना में बंसी बजाए गयो, कलाकार रागिनी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज कलाकार थी रागिनी, संगतकर्ता थे हारमोनियम पर देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर थे राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नक्कारा पर थे ईश्वर सिंह खींची। लोक संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल के गाए वजीर फिल्म के इस गीत को, जिसे लिखा है विधु विनोद चोपड़ा ने, धुन बनाई है शांतनु मोइत्रा ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

श्रोताओं, इस गीत को लिखा और गाया है जैस्मिन सैंडलास और सतिंदर सरताज ने। इस गीत को आप सुन रहे थे फिल्म धुरंधर द रिवेंज से। संगीत शाश्वत सचदेव का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और अजय की आवाजों में सिंघम फिल्म का गीत। शब्द रचना स्वानंद किरकिरी और संगीत अजय अतुल का है।

श्रोताओं, आइए अब सुनवाते हैं आपको एयरलिफ्ट फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में। शब्द रचना कुमार की और संगीत अमाल मलिक का।

श्रोताओं, अमाल मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना कुमार की शब्द रचना को। स्वर थे अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार के और फिल्म का नाम था एयरलिफ्ट। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुर सरिता अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोतो, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी गिरजा देवी से राग देव कंधार में ख्याल गायन। तो आइए सुनते हैं कलाकार विदुषी गिरजा देवी को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विदुषी गिरिजा देवी का राग देवगंधार में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम आज के कलाकार, और मैं साथ हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नीतू दुबे। तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अपने आज के कलाकार के बारे में। जी हां साथियों, आज हम जिस कलाकार के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है जीवन, जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। उनका पूरा नाम ओमकार नाथ धर था। उन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी भूमिकाओं को बड़ी ही संजीदगी के साथ निभाया। वैसे तो अभिनेता जीवन ने अधिकांश फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई थी, लेकिन फिर भी एक भूमिका ऐसी थी जिसमें दर्शकों ने उन्हें देखना हमेशा पसंद किया। जी हां साथियों, देवर्षि नारद के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शक कभी भूल नहीं पाएंगे। नारद मुनि के पौराणिक पात्र को अभिनेता जीवन ने 60 से भी ज्यादा फिल्मों में पर्दे पर जीवंत किया। साथियों, इनका जन्म 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। बचपन से ही इनको अभिनेता बनने का शौक था। इनके माता पिता का निधन जल्दी ही हो गया और इनका अभिनेता बनना इनके परिवार को पसंद नहीं था, तो 18 साल की उम्र में ये मात्र 26 रुपए लेकर ओमकारनाथ धर बंबई जाने के लिए घर से भाग गए।

साथियों, मुंबई आकर जीवन ने फिल्मी दुनिया में प्रवेश के लिए स्टूडियो में जो भी काम मिला इन्होंने किया। जीवन ने खूब मेहनत की और एक दिन ये मेहनत रंग लाई और उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। कहते हैं ना, कोई भी काम आसानी से नहीं मिलता। ऐसे ही इनको भी बहुत मेहनत के बाद काम मिला। वहीं से इनको नाम मिला जीवन, जो जीवन भर उनके नाम रहा। पता है साथियों, उनके अभिनय की एक खासियत थी कि खलनायक की में वे कॉमेडी भी डाल देते थे। उन्हें दिलीप कुमार के खिलाफ खलनायक के रूप में फिल्म कोहिनूर में देखें या नया दौर में, अभिनेता जीवन की टक्कर एक अलग ही माहौल खड़ा करती थी। उनका अभिनय सजीव लगता था। अमर अकबर एंथनी में भी इनके काम को सराहा गया। 1964 की फिल्म महाभारत में इन्होंने मामा शकुनी की भूमिका निभाई। हर भूमिका को वो बहुत ही अच्छे से निभाते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि जीवन ने नारद मुनि की भूमिका को 60 से अधिक फिल्मों में निभाया। नारायण नारायण बोलते जीवन को लोगों ने बहुत पसंद किया।

जो कि एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। साथ ही उनकी मुख्य भूमिका में लेकर नारद लीला फिल्म भी बनाई गई और कई फिल्मों में इन्होंने काम किया।

जी हाँ साथियों, अभिनय करना भी सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन जीवन अपने अभिनय से सबके दिलों में अपनी जगह बना ही लेते थे। साथियों, उनकी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें दिल ने फिर याद किया, आबरू, बंधन, भाई हो तो ऐसा, तलाश, धर्मवीर, चाचा भतीजा, सुहाग, नसीब, टक्कर, रोटी, देश प्रेमी, सुरक्षा और लावारिस जैसी कई सारी फिल्में शामिल हैं। पता है साथियों, जीवन एक ऐसे खलनायक थे जो हीरो से मार खाने में कभी कंजूसी नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक फिल्म तभी हिट होती है जब हीरो खलनायक को पीटता है। जीवन से कभी भी निर्माताओं को कोई शिकायत नहीं होती थी, वे अपने अभिनय के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते थे। इसलिए बीआर चोपड़ा और मनमोहन देसाई जैसे बड़े निर्माताओं की फिल्मों में जीवन साहब नियमित रूप से लिए जाते थे। साथियों, कलाकार वही होता है जो अपनी कला के लिए समर्पित हो। वो वक्त के बहुत पाबंद थे, कभी सेट पर लेट नहीं पहुंचते थे। समय की अहमियत भी उन्हें पता थी। जब भी वे शूटिंग के लिए हाजिर होते थे, सबसे पहले स्टेज को छूकर नमन करते थे और बाद में अपना काम शुरू करते थे।

साथियों, न जाने कितने सितारे आए और गए, लेकिन कुछ एक्टर्स का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उनमें से एक कैरेक्टर जीवन थे, जिन्होंने हमेशा विलेन का रोल किया और यहां तक कि लोग उन्हें असली का विलेन भी समझने लगे। हम सबने पुरानी फिल्मों में बतौर विलेन जीवन को देखा है। अलग अलग फिल्मों में जीवन का रोल कुछ ऐसा रहा जो यादगार बन गया। पता है, जितना खूंखार उनको फिल्मों में दिखाया गया, वो रियल लाइफ में उतने ही अच्छे इंसान थे। जीवन की खलनायकी इतनी मशहूर थी कि लोग उनसे वास्तविक जीवन में भी नफरत करने लगे। उन्होंने पर्दे पर खलनायक बनकर अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। अपने अभिनय के अलावा जीवन अपनी संवाद अदायगी के लिए भी काफी जाने जाते थे। उनके संवाद बोलने का तरीका बेहद कमाल का था। साथियों, हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। अभिनय के अलावा भी जीवन ने फोटोग्राफी, नृत्य, एक्शन, संगीत आदि में भी किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता उन्हें अभिनय में ही मिली।

साथियों आपको बता दें कि जीवन के बेटे किरण कुमार भी अपने पिता की तरह ही मशहूर अभिनेता हैं और उन्होंने भी पिता की तरह ही कई खलनायक के किरदार निभाए। साथियों अभिनेता वही होता है जो अपने काम को ही सबसे ज्यादा महत्व दे और लोग उसके काम को हमेशा याद करें। और जीवन एक ऐसे ही अभिनेता थे जिन्होंने खलनायकी में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। अपने काम को वे पूजा इबादत जैसा मानते थे। साथियों समय की रफ्तार बहुत तेज होती है। हम जीवन में आगे बढ़ते हुए कब अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे ही समय के साथ आगे बढ़ते हुए जीवन 72 साल की उम्र में 10 जून 1987 को इस दुनिया से विदा हो गए। नारद मुनि की अनेक भूमिकाओं और कितनी सारी फिल्मों के एक यादगार पात्रों से जीवन साहब हिंदी सिनेमा के दर्शकों के जीवन में अपना एक अलग ही स्थान रखते हुए आज भी सबके दिलों में जिंदा हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज के कलाकार कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, तो बने रहिए हमारे साथ इस रेडियो के सफर पर और आनंद लीजिए कुछ बातों और कुछ गीतों का, जिसमें आज हम आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। जी हां साथियों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। साथियों, जल जीवनदायक है, इसे व्यर्थ ना करें। कभी आपने सोचा है कि जल अगर ना मिले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते? दिन की शुरुआत से लेकर रात तक हम जल पर ही तो निर्भर हैं। साथियों, जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पता है, पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना नहीं की जा सकती। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे और समस्त जीव जगत जल पर ही तो निर्भर है। इसीलिए तो जल को जीवन का आधार कहा जाता है। पता है, हमारे शरीर का अधिकांश भाग भी तो जल से ही बना है और हमें अपने दैनिक जीवन लगभग हर काम के लिए जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

जी हाँ साथियों, पानी का कोई रंग नहीं होता, वो सब में मिल जाता है। लेकिन साथियों, आजकल समस्याएं तो बढ़ती जा रही हैं। आज बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल की मांग लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ भूजल स्तर तेजी से घटता जा रहा है और बढ़ते प्रदूषण के कारण नदियों और जलाशयों का हाल तो किसी से छुपा नहीं है। यदि समय रहते जल संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, जल की एक एक बूंद अनमोल है। पता है, जब कोई चीज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होती है तब हमें उसकी कीमत पता ही नहीं चलती और हम ये सोचते ही नहीं कि यदि ये नहीं मिलेगी तो क्या होगा। लेकिन अब ये सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि जल संकट बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसे बचाना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि नल को खुला न छोड़ें।

आवश्यकता से अधिक पानी का इस्तेमाल न करें, उपयोग न करें। वर्षा के जल को व्यर्थ बहने देना और जल स्रोतों को प्रदूषित करना, ये सब जल की बर्बादी के कारण हैं। और हम सबको इन आदतों को बदलना होगा। घरों में भी पानी सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जल की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है।

तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जल की एक एक बूंद कीमती है, यदि कहीं भी जल व्यर्थ बह रहा है तो ध्यान देना चाहिए और उसे ठीक कराने का प्रयास करना चाहिए। वर्षा के जल का संचयन करना चाहिए, क्योंकि हजारों लीटर वर्षा का जल यूं ही व्यर्थ चला जाता है। यदि प्रयास किया जाए तो उसका संचयन कर सकते हैं। साथियों, कृषि के लिए भी जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है, इसलिए कृषि क्षेत्र में भी आधुनिक सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करके पानी को बचाया जा सकता है। साथ ही नदियों, तालाबों और कुओं की स्वच्छता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, जल संरक्षण केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। और जल से ही तो प्रकृति है, जल से ही प्रकृति की सुंदरता है।

जी हाँ साथियों, प्रकृति की सुंदरता जल से ही है। पेड़ पौधे, हरियाली, ये सब जल से ही हैं। आज आवश्यक

लगता है कि हम जल के महत्व को समझें। एक समय था तब लगता था कि कभी पानी की कमी तो हो ही नहीं सकती, और आज देखिए शुद्ध जल मिलना कितना मुश्किल होता जा रहा है और अशुद्ध जल हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, शायद ये हम सब जानते हैं। तो आज आवश्यकता है कि हम जल के महत्व को समझें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें, क्योंकि यदि हम अभी से जल बचाने का संकल्प करेंगे तभी भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बन सकता है। और भविष्य की चिंता करना हम सबका दायित्व है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जल है तो कल है, इसलिए जल को जीवनदायक मानते हुए इसकी हर बूंद का सम्मान करें और इसे व्यर्थ न बहने दें, क्योंकि जल की कमी से मनुष्य ही नहीं सभी जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। हम सबको स्वच्छ जल पाने का अधिकार है, जिससे स्वस्थ जीवन संभव हो और हर कोई खुशहाल हो।

साथियों, जल ही हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पता है, जितनी सुंदर चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सब जल से ही हैं। पेड़, पौधे, झरने, नदियां, तालाब, इन सबको देखकर हमारा मन खुश होता है और इनसे हमारा पर्यावरण संतुलन में रहता है, जो कि बहुत आवश्यक है। नहीं तो पर्यावरण असंतुलन से बहुत सारी बड़ी समस्याएं जन्म लेती हैं और सबको संकट में डालती हैं। इसलिए जल संरक्षण के लिए हमें जल का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए, ताकि पानी की बर्बादी न हो। जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें, लेकिन फिजूल में नहीं, तभी हम सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। जल की सुरक्षा से ही हमारा भविष्य उज्जवल है। और धरती, नदियां, पेड़ पौधे सब जल से ही है। सारी बहारें इसी से हैं।

साथियों, इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमानाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों न बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

0: ऐसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि यह समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी,
0: हैं। फिर क्या होता है विमलेश जी?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है, ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी,
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को जेवेना कहते हैं।
1: जी,
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है,
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
1: जी,
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
1: जी,
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए। आज की ही जानकारी से तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: इथोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो।

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए

0: यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
1: ओह,
2: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
1: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
1: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
1: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
1: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में है, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
1: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो

0: चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
0: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकड़ी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
1: जी,
0: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
1: अच्छा,
0: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
1: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना? यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
0: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
1: अच्छा,
0: और इडुक्की के बाद इसमें नेरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथातन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथुवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि

0: पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
0: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
2: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। लेकिन आइए उससे पहले लेते हैं एक ये छोटा सा अंतराल।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्रोताओ, राजीव फिल्म का तरन अभी आपने सुना। आवाजें हर्षदीप कौर, विवा सर्राफ और शंकर महादेवन की थी। आइए अब सुनते हैं दबंग फिल्म का ये तराना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

यमला पगला दीवाना इस फिल्म का तराना आइए सुनते हैं उमर नदीम और श्रेया घोषाल के स्वरों में। गीत रचना इरशाद कामिल की है और संगीत से सजाया है संदेश सेंडियाल ने।

श्रोताओं, अगला तरह आइए सुनते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की आवाजों में। आशीष पंडित के लिखे गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

setting sun like a pearl upon the ocean. श्रोताओ, आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला तराना ये सुनते हैं फना फिल्म से, सोनू निगम, सुनिधि चौहान और आमिर खान के सुरों में। शब्द रचना प्रसून जोशी की है और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शिवा फिल्म का ये तराना श्रेया घोषाल के स्वर में।
2: बदली बदली बदली ये हवा

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

0: 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
1: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में रियासत में मुजोविजा सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट की पेशरफत का जायजा लिया और जरूरी अहकाम दिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है।
1: वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाके कौमी इम्तिहान एजेंसी के सदर दफ्तर का दौरा किया और 21 जून को मुजव्वजा नीट की री एग्जाम की तैयारियों का जायजा लिया। सदर दफ्तर के बाहर उन्होंने साथियों से बातचीत भी की। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। अब बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार प्यारी बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम घर संसार में और मैं हूं आपके साथ आपकी सखी राशि जैन। बहनों, दोपहर का वक्त हमारे आराम का वक्त होता है, लेकिन इसी बहाने हमारी बातचीत अगर हो जाए तो बस ये होता है चेरी ऑन द केक। बहनों, आज मैं आपसे मुलाकात करने आई हूँ, कुछ बातें करने आई हूँ। बहनों, ईश्वर ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, लेकिन उनमें से सबसे सुंदर और अद्भुत वरदान हमारी आंखें हैं। आंखें ना हो तो ये रंग बिरंगी दुनिया, हमारे अपनों के चेहरे और प्रकृति का ये सुंदर नजारा सिर्फ एक गहरा अंधेरा बनकर रह जाएगा। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है, सर्वेंद्रियाणम नयनम प्रधानम, यानी सभी इंद्रियों में आंखें सबसे प्रधान और श्रेष्ठ हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज का समय बदल चुका है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक अद्भुत विषय पर, जिसका शीर्षक है आंखें हैं अनमोल। बहनों, आज हम 21वीं सदी के डिजिटल युग में जी रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी आंखें किसी ना किसी स्क्रीन से बंधी रहती हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए लैपटॉप पर हो, दफ्तर का काम हो या मनोरंजन के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल। आज छोटे छोटे बच्चे अपनी आंखों पर कितना जोर डालते हैं, आप देख सकते हैं कि हर छोटे छोटे बच्चे के चेहरे पर चश्मे का मोटा मोटा नकाब चढ़ा हुआ है। कंप्यूटर का विजन सिंड्रोम, इससे हो जाता है आंखों में सूखापन, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में ड्राई आईज, धुंधलापन और लगातार सरदर्द आज की पीढ़ी की आम समस्या बन चुकी है। बहनों, हम अपनी सुख सुविधाएं और गैजेट्स के चक्कर में इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने उलझ चुके हैं कि इस अनमोल रत्न को दांव पर लगा रहे हैं, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम फोन की स्क्रीन खराब होने पर तुरंत उस पर गार्ड डलवा देते हैं, लेकिन अपनी आंखों की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो आप भी जानते हैं और मैं भी कि हम दोनों कितने लापरवाह हैं। आप अपनी आंखों का ध्यान रखें, सही आहार लें, अपनी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, आंवला, पपीता और विटामिन ए से भरपूर चीजें थोड़ी सी शामिल कर लीजिए। अगर बात करूं मैं ग्रामीण क्षेत्रों की, तो बहनों आज भी कई घरों में लकड़ी या उपलों पर खाना बनता है, जिसका धुआं सीधा हमारी बहनों के आंखों में लगता है, जिससे आंखों का लाल होना, पानी आना और समय से पहले मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है।

खेतों में काम और तेज धूप, कटीली झाड़ियों, गेहूं की कटाई के समय उड़ने वाली धूल भूसा या खेतों की कीटनाशक दवाई छिड़कते समय आंखों में कचरा जाने से इन्फेक्शन हो जाता है। लापरवाही और घरेलू नुस्खे, अगर मैं बात करूं तो आंखों में कुछ गिरने पर साड़ी के पल्लू से हमारी बहनें आंखें रगड़ लेती हैं और बिना डॉक्टर को दिखाए किसी के भी कहने पर आई ड्रॉप डाल लेती हैं। बहनों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। जो आप कर रही हैं ये आपकी आंखों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, मैं तो आपसे बस यही कहूंगी, आंखें बड़ी अनमोल चीज हैं। अगर ये ना हो तो दुनिया वाकई अंधेरे में डूबने लगेगी। जिस तरह हम देख पा रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी नजरों से कभी कोई दूसरा भी देख पाए, इसलिए नेत्रदान का संकल्प लें। हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें इस दुनिया को देख सकती हैं। नेत्रदान महादान कहा गया है। इसके लिए समाज में आप भी जागरूक हो जाइए और दूसरों को भी थोड़ा जागरूक कीजिए। बहनों, अपनी आंखों की कद्र कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ देखती नहीं है, ये हमारे लिए सपने बुनती हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक अंतराल का। अंतराल के बाद पुनः होगी मुलाकात।

अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है आपके मन पसंद कार्यक्रम घर संसार में, और मैं हूं आपके साथ आपकी सखी राशि। बहनों, अभी अंतराल पर जाने से पहले हमने बात की थी आंखों के अनमोल होने के बारे में। भाई, आंखें हैं तो रंग हैं, रंग हैं तो बहार हैं, बहार हैं तो ऋतु हैं, और हर मौसम का अलग ही मजा है। खैर, चलते हैं अभी उत्तर भारत की ओर, और अब हम बात करेंगे मेरे माटी मेरे देश के इस सेगमेंट में उत्तर भारत की प्रसिद्ध लोक कलाओं के बारे में। बहनों, उत्तर भारत की लोक कलाएं यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कथाओं, ऋतुओं और धार्मिक आस्थाओं का जीवंत प्रतीक हैं। ग्रामीण समुदाय विशेषकर महिलाओं द्वारा पीढ़ियों से संजोकर रखी गई ये कलाएं आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। बात करें अगर चित्रकला की यानी फोक पेंटिंग, इसके तो क्या ही कहने। आंगन और दीवार कला यानी फ्लोर और वॉल आर्ट, हस्तशिल्प और वस्त्र कला यानी हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल, लोक नाट्य और प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट और फोक आर्ट्स। आज के समय में महिलाएं अपनी पारंपरिक और आधुनिक कलाओं को केवल शौक ना रखकर उन्हें कमाई का एक बेहतरीन जरिया बना सकती हैं। बहनों, डिजिटल तकनीक और सरकारी योजनाओं की मदद से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं घर बैठे आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहनों, अगर आपके अंदर कोई कला है तो उसे आप निखार सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो शौक हमें होता है वो हमारी कमाई का जरिया बन जाता है। बहनों, अगर बात करें पारंपरिक लोक कला उत्पाद की यानी फोक आर्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, यदि आप मधुबनी, वर्ली आर्ट, मांडना या गोंद जैसी पारंपरिक चित्रकला जानती हैं तो केवल कैनवास पर पेंटिंग बनाने की बजाय उन्हें दैनिक उपयोग की चीजों पर उतारिए। क्या पता ये घर बैठे आपके लिए कमाई का साधन बन जाए। बात करते हैं हस्तशिल्प और वस्त्र कला के बारे में, तो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल। उत्तर भारत में कढ़ाई और सिलाई का हुनर लगभग हर घर में महिलाओं के पास होता है। आपने देखा ही होगा कि आपकी माँ और उनकी भी माँ और माँ की भी माँ, ये हमारे घर से ही शुरुआत होती है हमारे वस्त्र कला की। तो बहुत सारी महिलाओं को कढ़ाई बुनाई का बड़ा शौक होता है, और आप जानती हैं अगर आप थोड़ा सा उसमें ध्यान देंगी तो ये आपकी कमाई का जरिया बन सकता है। बहनों, कला सबके अंदर होती है, बस ज़रूरत है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की। यूं तो हम सारा दिन घर में काम करते हैं, लेकिन अगर काम स्वयं के लिए किया जाए तो बस फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं। खैर, आपसे बस इतना कहूँगी, सबके अंदर हुनर है, बस ज़रूरत है खुद को जगाने की। फिलहाल वक्त हो चला है गीत को सुनने का, लीजिए मेरी ओर से एक प्यारा सा गीत।

0: बहनों, ये गाना ना मेरे मूड को बड़ा रिफ्रेश सा कर देता है। अभी बहनों आपने सुना, सुर फिल्म से लिया गया गाना दिल में जागी धड़कन, जिसकी गायक थी सुनिधि चौहान, मेरी ऑल टाइम फेवरेट सिंगर। बहनों अभी रुकेंगे एक अंतराल के लिए और अंतराल के बाद पुनः हाजिर होंगे।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मैनो, अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट मुझे कुछ कहना है, जिसमें आज हम बात करेंगे पॉश एक्ट के बारे में। बहनों, आप सभी जानते हैं पॉश एक्ट का मुख्य उद्देश्य है कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना और उनके लिए एक सुरक्षित व सम्मानजनक माहौल तैयार करना है। इसे औपचारिक रूप से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध विशाखा गाइडलाइंस 1997 के आधार पर बनाया गया था। ये कानून कहां और किस पर लागू होता है, ये आपको बताते हैं। बहनों, बात करें तो ये कानून सभी कार्यस्थल, ये कानून सरकारी दफ्तरों, निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शैक्षणिक संस्थानों और यहाँ तक कि घरों में काम करने वाली डोमेस्टिक वर्कर्स महिलाओं पर भी लागू होता है। कंपनी में काम करने वाली स्थायी अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट संविदा, इंटर्न, फ्रीलांसर या वहां आने वाली महिला विजिटर्स भी इस कानून के तहत सुरक्षित हैं। बहनों, यूं तो हमारे भारत में कहा जाता है कि हमारे भारत में जो महिलाएं हैं वो आजकल पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिला और पुरुष में जो भेदभाव है वो अभी भी जारी है। यूं तो सरकार ने बहुत पहल की है कि महिला को सुरक्षा दी जाए और बहुत अच्छा कार्य भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारी महिलाएं थोड़ा डरती हैं। ऑफिस के अलावा ऑफिस कैब, वाहन, बिजनेस ट्रिप, क्लाइंट मीटिंग्स, ऑफिशियल इवेंट्स और वर्क फ्रॉम होम, इनके दौरान होने वाला साइबर उत्पीड़न भी इसके दायरे में आता है। हाल ही में आए न्यायिक फैसलों के अनुसार यदि कोई महिला अपने कार्यस्थल के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित की जाती है तो पॉश एक्ट के तहत वो अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायत कर सकती है। बहनों, आपको थोड़ी सी ज़रूरत है अवेयर होने की, जागरूक होने की। पॉश एक्ट महिलाओं के लिए बड़ा कारगर साबित हो रहा है। इस एक्ट के तहत महिलाएं और सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं। जितनी भी वर्कर हैं हमारी महिलाएं, जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं, वो पॉश एक्ट के तहत अच्छी खासी सुरक्षा का फ़ायदा उठा पा रही हैं। बहनों, आपसे कहूंगी कि ऐसी कई सारी एक्ट्स हमारे लिए बने हुए हैं, लेकिन हम उन्हें लेकर अवेयर नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, पॉश एक्ट के तहत आप किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, किसी भी प्रकार की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के गाइडलाइंस में आप अपनी कंप्लेन जो है, अपनी शिकायत जो है वो कर सकती हैं। अब वक्त तो चला है कहानी को सुनने का, जिसका शीर्षक है विश्वास की डोर।
2: तृप्ति और रवीश के विवाह की 5वीं वर्षगांठ थी। तृप्ति शाम की सरप्राइज पार्टी के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन जब शाम को रवीश घर आए तो परेशान लग रहे थे। तृप्ति, आज कहीं बाहर जाने का मन नहीं है, घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, रवीश ने बैग रखते हुए कहा। ठीक है, आप जैसा चाहो, तृप्ति ने कहा। तृप्ति ने रवीश की पसंद का खाना बनाया। सबको खिलाकर और आयान को सुलाकर तृप्ति अपने कमरे में चली गई। रवीश के सर में वास्तव में बहुत दर्द था। तृप्ति ने अपने स्नेहिल स्पर्श से रवीश का सर दबाया तो जाने कब रवीश की आंख लग गई। लेकिन अगली सुबह रवीश बहुत जल्दी जाग गए। एक कप चाय के साथ दोनों के दिन की शुरुआत होती थी। दोनों चाय पी ही रहे थे कि तभी रवीश ने कहा, तृप्ति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, तृप्ति ने रवीश के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। तृप्ति, कल रास्ते में मुझे मेघना दिखाई दी, रवीश ने सकुचाते हुए कहा। मेघना? इतने लंबे समय बाद आपको कहाँ दिखाई दी वो, तृप्ति ने पूछा। मैं ऑफिस से घर लौट रहा था कि रास्ते में मेघना को सड़क पर जाते हुए देखा। उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं।

लग रही थी। कई गलियों से गुजरते हुए मैं उसके घर तक पहुंचा। घर बहुत छोटा और साधारण सा था। अंदर से विहान कह रहा था, मम्मा आप मेरी बुक्स नहीं लेकर आई? फिर क्या हुआ, तृप्ति ने पूछा। मेघना ने कहा, बेटा दुकान बंद थी, कल जरूर ले आऊंगी, मम्मा प्रॉमिस। मेघना की बातों में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। आस पड़ोस में पता किया तो पता चला कि मेघना 6 महीने पहले यहाँ आई है और किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है। ये सब देखकर मुझे विहान के लिए बहुत दुख हुआ। मेरा छोटा सा बच्चा अभाव में पल रहा है तृप्ति, उसके पास जरूरी जरूरतें पूरे करने के लिए भी साधन नहीं है, रवीश ने नम आंखों से कहा। आप दुखी ना हो, शाम तक आपकी समस्या का हल हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी, तृप्ति ने रवीश को गले लगाकर आश्वस्त किया। रवीश ऑफिस चले गए और तृप्ति काम करते हुए यही सोच रही थी कि कैसे इस समस्या को हल किया जाए। दिमाग में हलचल हुई तो दिमाग पर अतीत हावी होने लगा। तृप्ति और मेघना दोनों बचपन की सहेली थीं, दोनों ही पढ़ाई में अच्छी थीं, लेकिन हर मामले में मेघना अव्वल थी। ग्रेजुएशन के साथ साथ दोनों ने क्लैट की कोचिंग रवीश के कोचिंग सेंटर में ही ली और मेघना को देखकर रवीश उससे प्यार कर बैठा। इधर तृप्ति भी मन ही मन रवीश को पसंद करने लगी थी। समय बीता और MBA होने के बाद मेघना और तृप्ति दोनों की ही नौकरी लग गई। उस दिन रवीश ने मेघना को प्रपोज कर दिया। मेघना ने रवीश के सामने नौकरी करने की शर्त रखी, जिसे रवीश ने तुरंत मान लिया। दोनों का विवाह हो गया। तृप्ति रवीश को खोकर भी मेघना के लिए बहुत खुश थी। समय बीता, मेघना की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। तभी उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। वो इस समय कोई बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ हेल्थ इशू के कारण ना चाहते हुए भी उसे जुड़वा बच्चों को जन्म देना पड़ा। उस दिन तृप्ति बहुत खुश थी। अक्सर वो बच्चों से मिलने जाती। मेघना फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। उसे न घर की चिंता होती और न ही बच्चों की। रवीश और मेघना में झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। मेघना ने एक दिन घर छोड़ दिया और कैरियर चुन लिया। वो विहान को अपने साथ ले गई। रवीश बिल्कुल टूट गए थे। उस समय तृप्ति ने उन्हें और आहान को संभाला। मेघना की जिद के कारण दोनों का तलाक हो गया। सुना था मेघना जॉब करने के लिए विदेश चली गई है। कुछ दिन बाद रवीश की माँ ने तृप्ति से रवीश की शादी का जिक्र किया तो तृप्ति को तो जैसे सब कुछ मिल गया। तृप्ति ने अपनी समझदारी और प्रेम से रवीश को पा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक मेघना वर्तमान में लौटते हुए तृप्ति को कुछ याद आया और उसने एक फोन मिलाया। बात करने के बाद वो खुश नजर आ रही थी। लग रहा था जैसे उसकी समस्या सुलझ गई है। उसने सारी बात रवीश को बताई और दोनों अगली सुबह अयान को माँ के पास छोड़कर मेघना के घर गए। तृप्ति ने दरवाजा खटखटाया तो विहान ने खोला। आपको किससे मिलना है? विहान ने कहा, आपकी मम्मा से। तृप्ति ने कहा ही था कि मेघना हाथ पोछते हुए बाहर आई। मेघना तृप्ति और रवीश को देखकर चौंक गई थी। तृप्ति ने ही मेघना से सब कुछ पूछा। मेघना ने आप बीती बताते हुए कहा कि विदेश में नौकरी करना उसे बहुत भारी पड़ा। वो कंपनी फ्रॉड थी। बड़ी मुश्किल से ही वो वहां से आयान को लेकर इंडिया वापस आई। इसी टेंशन में माँ चल बसी और भाई ने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। फ्रॉड का ऐसा धब्बा मेघना के कैरियर पर लगा कि उसे यहाँ कहीं नौकरी नहीं मिली। तब हार कर उसने स्कूल की नौकरी ज्वाइन की। मेघना ये सब बताते हुए रोए जा रही थी। तृप्ति ने मेघना के हाथ पर हाथ रखते हुए उसे सांत्वना दी और कुछ पेपर उसके हाथ पर रखे। अरे अरे, ये तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। सैलरी भी बहुत अच्छी है। रवीश, ये सब तुमने मेरे लिए?
मेघना ने

रविश की ओर मुड़ते हुए कहा, यह सब तृप्ति ने किया है, वो भी अयान के लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे लिए कभी कुछ करना भी नहीं चाहता। जिस दिन तुम घर छोड़कर गई थी, उसी दिन तुमसे मेरा हर एहसास, हर रिश्ता खत्म हो गया था। लेकिन हाँ, अयान मेरा बेटा है, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, रवीश ने कहा। अच्छी जॉब है।

0: तृप्ति ने रवीश का हाथ पकड़कर कहा। धीरे धीरे दोनों मेघना की आंखों से ओझल हो गए। तृप्ति के चेहरे पर संतुष्टि, रवीश के चेहरे पर सुकून और मेघना के चेहरे पर ग्लानि के भाव थे।
1: बहनों, अभी आपने सुनी एक कहानी जिसका शीर्षक था विश्वास की डोर, जिसकी कहानीकार थी पारुल मित्तल। सच ही कहा है किसी ने कि हर घर को बनाने का काम जो है वो हम जैसी महिलाएं करती हैं। अगर हम उसे संवार सकती हैं तो हम ही हैं जो उसको बिगाड़ देती हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो थोड़ा सा अवेयर होने की, थोड़ा सा अपने दिल को, अपनी समझ को मजबूत करने की, और बस फिर हम घर बना भी देंगे और सवार भी देंगे, है ना बहनों? चलिए अभी रुकते हैं एक अंतराल के लिए, और अंतराल के बाद पुनः मिलेंगे आपसे।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम घर संसार में, और मैं हूं आपके साथ आपकी सखी राशि जैन। बहनों, अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट बात पते की। हमारा अंतिम सेगमेंट है ये, और इसमें हम चर्चा करेंगे अधिक मास के बारे में। हाँ जी बहनों, तो सुन लीजिए जरा, भक्ति का रस बरसता है जहाँ, वो पावन काल आया है। हर दिल में प्रभु का नाम, हर जुबा पर हरि का साया है। मलमास नहीं, ये तो साक्षात नारायण का रूप है। लो, 3 साल बाद फिर से पुरुषोत्तम मास आया है, अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास, मलमास या लौंद का महीना भी कहा जाता है। बहनों, हिंदू पंचांग का एक अतिरिक्त महीना है ये, जो हर साल 3 साल में आता है। वर्ष 2026 में ये पवित्र महीना 17 मई से 15 जून तक अधिक ज्येष्ठ मास के रूप में मनाया जा रहा है। सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटे और चंद्र वर्ष 354 दिन के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आता है। इस अंतर को पाटने और सभी त्योहारों को सही ऋतु के अनुसार बनाए रखने के लिए हर 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ियों के बाद पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। बहनों, कहा जाता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद इस महीने को प्राप्त है। इस महीने का कोई स्वामी नहीं होने के कारण इसे मलमास यानी अपवित्र मास मानकर उपेक्षित किया गया था। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और वरदान दिया कि इस मास में की गई भक्ति का अनंत गुना फल मिलेगा। तो बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भक्ति और शक्ति का अनंत गुना फल मिले, तो भाई इस महीने में जोर लगाकर जरा प्रेयर कीजिए, जोर लगाकर जरा तप त्याग तपस्या कीजिए, क्या पता भगवान प्रसन्न हो जाए और आपको भी मिल जाए अनंत गुना फल। तो बहनों, आज हमने कई सारी बातें कर ली हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आंखें अनमोल हैं इस बारे में, जिसमें आपसे मैंने की थी रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा अपनी डाइट में हरी पत्तियों का, सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए, बच्चों को भी समझाइए कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को ज़रा कम देखें। उसके बाद हमने मेरे माटी मेरे देश के सेगमेंट में बात की थी उत्तर भारत की प्रसिद्ध लोक कलाओं के बारे में, फिर हमने बताया आपको पॉश एक्ट के बारे में। उसके बाद हमने सुनी एक कहानी जिसका शीर्षक था विश्वास की डोर, और उसके बाद बात पते की है सेगमेंट में मैंने आपको बताया अधिक मास के बारे में। इसी बीच हमने सुना था एक गाना जो था दिल में जागी धड़कन ऐसे, जिसकी गायक थी सुनिधि चौहान। मैंने कहा था कि वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट सिंगर है और ये गाना बड़ा ही मूड को रिफ्रेश करता है। तो आज तो हमने कर ली ढेर सारी बातें, मगर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार। और श्रोताओं बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर। और बता दें आपको कि हमारी घड़ी में हो रहे हैं दोपहर के 1:46 और अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे रानू मुखर्जी के गाए कुछ गीत। तो आइए सुनते हैं सुगम संगीत का ये कार्यक्रम।

श्रोताओ, आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रानू मुखर्जी के गाए गीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये प्यारी सी रचना।

श्रोता, इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र

0: सेवा में समर्पित किया है।
1: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
3: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
3: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत

0: के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की।

0: के साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विदुषी शोभा गोरटू का राग ठुमरी मिष्ट पहाड़ी में गायन।

खुशी शोभा गोटू का मिश्र पहाड़ी में ठुमरी गायन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत रचना SH बिहारी की है और संगीत दिया है OP नैयर ने।

अगला गीत आइए सुनते हैं हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज में। गीत रचना साहिर की है और संगीत से सजाया है रवि ने।

आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हमसाया फिल्म का ये गीत, स्वर मोहम्मद रफी का है।

है। मीडियम में वे 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं ताल फिल्म से।

श्रोताओं, ताल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं मस्ताना फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, सागर फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार के सुर में। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के सुर में।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। शाम के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई बद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में जन कल्याण पर केंद्रित सरकार

0: सरकार की नीतियों का उल्लेख और प्रमुख जनसंख्यिकी समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री था गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के जीएनएसएस रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी और पीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी संवाद से सद्भाव विषय पर। साथ ही होगी वार्ता जिसका विषय होगा सभ्यताओं के बीच संवाद की अनिवार्यता आवश्यक। वार्ताकार होंगी यशवी उपाध्याय। सेगमेंट आइए जाने में आज जानेंगे शांग्री लव डायलॉग के विषय में। जीने की कला सेगमेंट में सकारात्मक मनोवृत्ति के विषय में लीजिएगा जानकारी। हमारे ग्रामीण अंचल के साथ ही सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक शाम 6:00, जिसमें आज चर्चा होगी

मिश्रित खेती है जहां, उन्नति है वहां विषय पर साथियों की वार्ता। कैसे बने सफल कृषि उद्यमी, वार्ताकार होंगे डॉक्टर आरपी अग्रवाल। साथी जानिएगा मौसम का हाल, मंडी भाव और आनंद लीजिएगा लोक गीतों का। हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथी आनंद लीजिएगा काव्य पाठ हरीश कुमार बदहोरिया से। अन्य सेगमेंट होंगे आज का प्रश्न होगा, ज्ञान सागर लीजिएगा, सेहत टिप्स और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। श्रोताओं कार्यक्रम विविधा का समय रहेगा शाम 7:10, जिसमें सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय विषय दिवस है आज, इसी पर आधारित होगी हमारी आज की वार्ता, जिसका विषय होगा सभ्यताओं के पोषण के लिए शस्त्र नहीं संवाद जरूरी। आलेख प्रोफेसर सुगम आनंद का, स्वर होगा प्रशांत सत्संगी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुन सकते हैं शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे रात्रि 8 बजे कार्यक्रम एक और अनेक में। इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुनेंगे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8:30 पर। और श्रोताओं, इसके अलावा आप फिल्म संगीत सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे, तो सुनना मत भूलिएगा रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत। श्रोताओं, हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है, समय रहेगा रात्रि 9:30। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज के कलाकार होंगे पंडित जसराज, आप प्रस्तुत करेंगे राग धूलिया मल्हार में ख्याल गायन। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम सूर्य संध्या का, तो आइए सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सूर्य संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत मरते दम तक फिल्म से महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सुर संध्या में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दाता फिल्म से ये भक्ति रचना महेंद्र कपूर, साधना सरगम और सुरेश वाड़ेकर की आवाजों में। अनजान की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में जोधा अकबर फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी A.R. रहमान के स्वर में। A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। श्रोताओं, इन भक्त रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। 5:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

अपेक्षा शाक्या को। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, यानी सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो अलग अलग कल्चर्स और सभ्यताओं के बीच आपस में बातचीत। डायलॉग इज द पाथ टू पीस। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स की ये बात आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। लेकिन दोस्तों, शांति और सद्भाव की शुरुआत होती कहाँ से है? इसका जवाब है संवाद। एंड ऑनेस्टली, आज के टाइम में संवाद की ज़रूरत शायद पहले से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए आज हमारी चर्चा का विषय है संवाद से सद्भाव, यानी हार्मनी थ्रू डायलॉग। दोस्तों, डायलॉग का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सामने वाले को गहराई से सुनना और समझना होता है। जब दो लोग या दो कल्चर्स आपस में बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए बात करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। दोस्तों, एक तरफ दुनिया में वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कई लोग हंगर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा डिवोट करते हैं, दिन रात रील्स देखते हैं, ट्वीट्स करते हैं। पर कभी आपने नोटिस किया है, हल्की सी बात हुई नहीं कि कमेंट सेक्शन में हेट शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे को बिना समझे कैंसिल करने लगते हैं। हम सब बोल तो रहे हैं लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा। दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है कि हम सब अलग हैं। किसी का खाना अलग है, किसी का पहनना अलग है, तो किसी की लैंग्वेज अलग है। संवाद से सद्भाव का असली मतलब यही है कि हम आपस में बैठकर बात करें, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बिना जज किए सुनना और समझना हमें सीखना होगा। क्योंकि हम ही वो जनरेशन हैं जो बॉर्डर्स के पार फ्रेंडशिप्स बना सकते हैं। मैं और आप ही वो जनरेशन हैं जो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सकते हैं, और हम ही वो जनरेशन हैं जो डिजिटल वर्ल्ड की हेट को और अंडरस्टैंडिंग को एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग में भर सकते हैं। दोस्तों, संवाद सिर्फ लीडर्स और डिप्लोमेट्स के बीच नहीं होता। संवाद तब भी होता है जब आप किसी दूसरे कल्चर के बारे में क्यूरोसिटी दिखाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आज लाखों लोग एक दूसरे के कल्चर्स को देखते, समझते और अप्रिशिएट भी करते हैं। कभी कोरियन म्यूज़िक सुनते हैं, कभी जापानीज एनिमे देखते हैं, कभी अफ्रीकन क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, कभी यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स के फैन बन जाते हैं, तो कभी ऑनलाइन गेम्स में अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर्स के साथ मिलकर एक ही मिशन कंप्लीट करते हैं। आखिर यही तो संवाद है, जब आप किसी को जज करने से पहले उसकी बात सुनते हैं, जब आप डिफरेंसेस के बावजूद रिस्पेक्ट चूज करते हैं। दोस्तों, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, बातचीत और अंडरस्टैंडिंग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी मैसेज के साथ आज दुनिया इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस सेलिब्रेट कर रही है। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसा कि आप जानते हैं, युवानी पर हम आपके दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। तो आज का हमारा सवाल ग्लोबल डायलॉग और हिस्ट्री से जुड़ा है। ध्यान से सुनिए, वो कौन सा पुराना और ऐतिहासिक रास्ता है, यानी हिस्टोरिक रूट है, जो सदियों पहले ईस्ट और वेस्ट के बीच ट्रेड और कल्चरल डायलॉग का सबसे बड़ा जरिया बना था। सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो सब जवाब ज़रूर मिल जाएगा। इसका जवाब हम कार्यक्रम के दौरान देंगे, तब तक के लिए थोड़ा सोचिए और दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। दोस्तों, अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का। बुलाते हैं आज के गेस्ट स्पीकर यशवी उपाध्याय को।

0: जो हमें बताएंगी कि आज के युद्ध के लिए सभ्यताओं के बीच संवाद की अनिवार्यता आवश्यक क्यों है, यानी अलग कल्चर के बीच बातचीत आज के समय में कितनी जरूरी है। आइए सुनते हैं उनके विचार।
1: कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां चार रास्ते आकर मिलते हैं। एक रास्ता भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से होकर आता है, दूसरा चीन की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता से, तीसरा अफ्रीका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से, और चौथा दुनिया के अनेक देशों की आधुनिक सोच और अनुभवों से। अब सोचिए, यदि ये सभी रास्ते एक दूसरे से मिलने से इनकार कर दें तो क्या होगा? हर रास्ता अपनी दिशा में चलता रहेगा, लेकिन दुनिया शायद उस सामूहिक बुद्धिमत्ता से वंचित रह जाएगी जो मिलकर आगे बढ़ने से पैदा होती है। इसी सामूहिक बुद्धिमत्ता और सामूहिक समझ के महत्व के प्रति जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से ही हर वर्ष 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियां तब संभव हुई हैं जब सभ्यताओं से एक दूसरे से संवाद किया, एक दूसरे को समझा और एक दूसरे से सीखा। सभ्यताओं के बीच संवाद की आवश्यकता और उसकी अनिवार्यता हर कालखंड में रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। श्रोता मित्रों, ये एक विचार भर ही नहीं बल्कि आज की वैश्विक आवश्यकता है। जब हम सभ्यता शब्द सुनते हैं तो अक्सर हम में से अधिकतर के मन में यह विशाल स्मारक, प्राचीन नगर या ऐतिहासिक ग्रंथों की छवियां उभरती होंगी, लेकिन सभ्यता केवल इमारतों या इतिहास का नाम नहीं है। सभ्यता हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, हमारी जीवन शैली है और दुनिया को देखने का हमारा दृष्टिकोण है। पृथ्वी पर अब तक जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उनमें से प्रत्येक ने मानवता को कुछ ना कुछ अनमोल दिया है। किसी ने विज्ञान को समृद्ध किया तो किसी ने दर्शन को, किसी ने कला को और किसी ने सामाजिक जीवन के नए आयाम प्रस्तुत किए। इतिहास हमें इस बात की गवाही देता है कि जब जब सभ्यताओं ने संवाद किया तब तब मानव समाज ने प्रगति की। व्यापारिक मार्गों ने केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं किया बल्कि विचारों, तकनीकों, भाषाओं और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान कराया। यात्रियों, विद्वानों और खोजकर्ताओं ने सीमाओं को पार करके दुनिया को एक दूसरे के और करीब लाने का कार्य किया। यदि संवाद न हुआ होता तो शायद अनेक ज्ञान परंपराएं अपने सीमित दायरों में ही रह जाती। लेकिन संवाद का महत्व केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, आज के समय में इसकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दुनिया एक दूसरे से पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है। इंटरनेट, संचार, तकनीक और वैश्विक संपर्क ने दूरियों को कम कर दिया है। आज हम कुछ ही क्षणों में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। फिर भी एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि क्या हम वास्तव में एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? तकनीक ने संपर्क तो बढ़ाया है, लेकिन समझ तभी बढ़ती है जब संवाद होता है। आज दुनिया अनेकों चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, संघर्ष, विस्थापन और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएं किसी एक देश या एक संस्कृति तक सीमित नहीं है। इनका समाधान भी राष्ट्र या एक सभ्यता द्वारा अकेले संभव नहीं है। इसके लिए विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और सभ्यताओं को साथ बैठकर विचार करना होगा, और वह संवाद ही है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग अनुभवों और दृष्टिकोणों में भी मूल्यवान समाधान छिपे हो सकते हैं। संवाद का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी पहचान छोड़ दें या अपनी परंपराओं को भुला दें। वास्तव में संवाद हमें अपनी जड़ों को और बेहतर समझने का अवसर देता है। जब हम दूसरों के विचारों को सुनते हैं तब हमें अपने विचारों की भी नई समझ मिलती है। विविधता कोई कमजोरी नहीं है, यह मानवता की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। जिस प्रकार एक बगीचा केवल एक प्रकार के फूलों से नहीं बल्कि अनेक रंगों और सुगंधों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार दुनिया भी विभिन्न सभ्यताओं की विविधता से समृद्ध बनती है। भारत स्वयं इस विचार का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ सदियों से अनेक भाषाएं, परंपराएं, आस्थाएं और जीवन शैलियां साथ साथ विकसित हुई हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें सिखाती है कि भिन्नता को स्वीकार करना और सम्मान देना ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। वसुधैव कुटुंबकम का विचार हमारे लिए केवल एक आदर्श वाक्य भर नहीं बल्कि मानवता को जोड़ने वाला संदेश है जो हमें बताता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। विशेष रूप से हम युवाओं की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के युवा पहले की तुलना में अधिक वैश्विक वातावरण में रह रहे हैं। वे नई भाषाएं सीख सकते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को समझ सकते हैं और दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं। जब एक युवा किसी अन्य संस्कृति के साहित्य को पढ़ता है, किसी दूसरे देश के व्यक्ति से संवाद करता है या किसी नई परंपरा को समझने का प्रयास करता है, तब वह केवल जानकारी प्राप्त नहीं कर रहा होता बल्कि सभ्यताओं के बीच

पुल का निर्माण कर रहा होता है। 10 जून को मनाया जाने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हमें यही संदेश देता है कि भविष्य उन समाजों का होगा जो संघर्ष पर संवाद को, प्रतिस्पर्धा पर सहयोग को और पूर्वाग्रह पर समझ को प्राथमिकता देंगे। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि मानवता की साझा चुनौतियों का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे की बात सुनने और समझने के लिए तैयार हों। आज का दिन हम सबके लिए यह संकल्प लेने का दिन है कि हम भिन्नताओं से डरेंगे नहीं बल्कि उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। हम अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरों का सम्मान करेंगे। हम दीवारें नहीं पुल बनाएंगे, क्योंकि जब सभ्यताएं संवाद करती हैं तो केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि विश्वास जन्म लेता है, सहयोग बढ़ता है और मानवता आगे बढ़ती है। मैं पूरी आशा और दृढ़ विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि संवाद के

0: आशा और दृढ़ विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि संवाद के जरिए अवश्य ही देश दुनिया की विविध आवाजें मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगी।
1: थैंक यू सो मच यशवी, जिस तरीके से आपने अपने थॉट्स को शेयर किया वो काफ़ी इंस्पायरिंग थे। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है। सो लिसनर्स, जैसा कि हमने आपसे एक सवाल पूछा था, ईस्ट एंड वेस्ट को जोड़ने वाला, कल्चर्स का एक्सचेंज करने वाला वो हिस्टोरिक रूट कौन सा है? चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और आंसर रिवील करते हैं। सही जवाब है द सिल्क रोड। ये रास्ता मेजरली चाइना से शुरू होकर सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जाता था। सदियों तक इस रास्ते से सिर्फ सिल्क, स्पाइसेस या कपड़ों का बिजनेस नहीं हुआ, बल्कि इस रास्ते ने अलग अलग सभ्यताओं के आइडियाज़, फिलॉसफी और रिलीजन्स को एक दूसरे तक पहुंचाया। तो जिन जिन दोस्तों का आंसर सही था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जहां दिमाग की इतनी एक्सरसाइज हो ही गई है, तो मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: वेलकम और वेलकम बैक दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले और सुपर एक्साइटिंग सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आइए जाने। इस सेगमेंट में हम दुनिया भर के कुछ ऐसे फैक्ट्स और इवेंट्स के बारे में जानते हैं जो हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं शंग्रीला डायलॉग के बारे में। दोस्तों, पहली बार जब मैंने ये नाम सुना था तो मुझे लगा कोई फिक्शनल स्टोरी है, पर असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शंग्रीला डायलॉग बेसिकली एशिया का सबसे बड़ा और प्रीमियर डिफेंस और सिक्योरिटी समिट है। इसे हर साल सिंगापुर के फेमस शंग्रीला होटल में एक टॉप ग्लोबल थिंक टैंक ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसका नाम है IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज। दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रैक वन डिप्लोमेसी प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, मिलिट्री चीफ्स और टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक छत के नीचे आते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि ये लोग मीडिया के सामने ऑन द रिकॉर्ड बैठकर इंडो पैसिफिक रीजन के सबसे बड़े सिक्योरिटी इश्यूज और आपस के झगड़ों पर बात करते हैं। अगर हम इस बार के समिट की बात करें तो हाल ही में 19 से 31 मई 2026 को सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ नज़ारा बहुत ही दिलचस्प था। सबसे पहले इस बार ओपनिंग कीनोट स्पीच वियतनाम के प्रेसिडेंट तोलाम ने दी थी और यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सेट ने तो सबका ध्यान खींचा जब उन्होंने कहा कि अब देशों को सिर्फ दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद को एक्टिव और कैपेबल रीजनल पार्टनर बनाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये कि इस बार चाइना का डेलीगेशन थोड़ा छोटा दिखा, जिससे साफ पता चलता है कि चाइना और बाकी रिलेशनल राइवल्स के बीच इंटरनेशनल रूल्स को लेकर अभी भी काफ़ी बड़े डिफरेंसेस चल रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि पुराने डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद US, चाइना, इंडिया, जापान और यूरोपियन एलीस के टॉप लीडर्स यहाँ बंद कमरों में बायलैटरल टॉक्स यानी आमने सामने की बातचीत करते हैं ताकि टेंशन्स को डी एस्केलेट किया जा सके, यानी झगड़े को बढ़ने से रोका जा सके। इवन यहाँ साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सेफ्टी जैसे मॉडर्न इश्यूज पर भी चर्चा होती है। दोस्तों, हमने देखा कि ग्लोबल लेवल पर भी संवाद ही सबसे बड़ा वेपन है। चाहे कितना बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, आखिरी और परमानेंट सॉल्यूशन गुस्से से नहीं बल्कि एक टेबल पर बैठकर आमने सामने बातचीत करने से निकलता है। दोस्तों, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और बड़े बड़े देशों की बात तो हमने कर ली, अब आते हैं थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पर, यानी हमारी और आपकी पर्सनल लाइफ पर, जीने की कला पर। दोस्तों, हम सभी यंग लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है सकारात्मक मनोवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। हम यूथ की लाइफ में प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। एग्जाम्स का स्ट्रेस, करियर की चिंता, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस या फिर दोस्तों के साथ तनाव या अनबन, और हाँ, कभी कभी वो दुख जिसे हम ब्रेकअप कहते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हम बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं या नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। पर सकारात्मक मनोवृत्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दें और झूठी खुशी दिखाएं। इसका मतलब है कि हर मुश्किल, हर चैलेंज का सामना उम्मीद, स्माइल और कंस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ करना। जैसे एक कहावत है, अगर लाइफ आपको लेमन्स दे तो उसका लेमनेड बनाकर पी लीजिए। नेगेटिव सोचने से किसी प्रॉब्लम का सलूशन आज तक नहीं निकला और ना कभी निकलेगा। अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखो। फेलियर से डरो मत, इन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक आप अंदर से पॉजिटिव नहीं होंगे, तब तक आसपास की दुनिया में कोई अच्छा बदलाव नहीं ला पाओगे। सो कीप योर हेड हाई। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का, जिसमें हम सुनेंगे प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अब आपकी होस्ट और दोस्त अपेक्षा आपसे इजाज़त चाहती है। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह एक नए होस्ट और नई बातों के साथ। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

श्रोताओ, आज के ग्राम्य लोक कार्यक्रम में मैं यशपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको हमारी राम राम। और सुनाइए किसान साथियों, कैसे हालचाल हैं आपके? आशा है सब ठीक ही होंगे। भाई, जेठ का महीना चल रहा है, पर देखिए कभी तेज आंधी तूफान के साथ साथ बरसात भी हो रही है। जी हाँ किसान भाइयों, आगरा समेत तो समूचे ब्रज में कल यानी मंगलवार के दिन तेज धूप और लू लपट के बाद शाम को तेज आंधी के बाद बरसात ने गर्मी से राहत दिलाई थी। हालांकि इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। गर्मी के इन दिनों में मौसम का यह उतार चढ़ाव अभी कुछ वर्षों से अचानक से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो गया है। लेकिन श्रोताओं, आम जन के लिए यह बदलता मौसम राहत दे सकता है, वहीं हम किसानों के लिए यह मौसम का कोई भी बदलाव हमारी कृषि को प्रभावित करता है। अब देखिए, इस गर्मी में बरसात से हम सबको राहत मिली है, वहीं खेती किसानी में खाली पड़े

खेतों में तो भाई फायदा हुआ है, लेकिन जायद की फसल में यानी खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, करेला, मूंग में बहुत नुकसान हुआ है। क्यारियों में पानी भर गया है और तेज हवा ने फसल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं तेज आंधी और कुछ जगहों पर ओले पड़ने से गर्मी के बाजरे की पकी हुई फसल बर्बाद हुई है। यानी बदलते मौसम का सीधा असर हमारी कृषि पर पड़ता है। इसीलिए किसान साथियों, हमें अपनी कृषि में ऐसे तौर तरीके और पद्धति अपनाने चाहिए जिससे खेतीबाड़ी में बुरे दौर में भी किसान संभल जाए। ऐसी ही एक पद्धति है मिश्रित खेती की। जी हाँ किसान साथियों, मिश्रित खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसे किसान फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी या मुर्गी पालन भी करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है आमदनी बढ़ाना, जोखिम को कम करना। जोखिम जैसे अगर कृषि में नुकसान हुआ है तो भाई पशुपालन से निरंतर आमदनी बनी रहे, और अगर पशुपालन में या दुग्ध उत्पादन में कोई नुकसान हुआ है तो किसान साथी कृषि से उसकी भरपाई कर सकें। इसके अलावा सबसे प्रमुख बात, मिश्रित खेती में खेत के संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। मिश्रित खेती का एक लाभ यह भी है कि भाई पशुओं के गोबर और गौमूत्र का उपयोग खेतों में जैविक खाद के रूप में किया जाता है, जिसके बिना रसायनों से खेतों की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर हम गोबर का खाद अधिक इस्तेमाल करेंगे तो भाई रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी कम होगा और जैविक खेती करने में बहुत लाभकारी होता है। और जब हम बात मिश्रित खेती में खेतों के संसाधनों के अधिकतम उपयोग की करते हैं तो इसका मतलब है कि खेतों में बची हुई फसल या चारे का उपयोग पशुओं के लिए किया जाता है, जिससे लागत भी कम होती है। किसान साथियों, हमारे भारत देश में पहले से ही मिश्रित खेती होती आ रही है। मिश्रित खेती कहीं पर लाभ के उद्देश्य से की जाती है तो कहीं पर मजबूरी के कारण। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में अगर पशुओं में महामारी होने की संभावना रहती है तो केवल फसल उत्पादन ही कर पाते हैं, और यदि फसल में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है तो भाई किसान साथी अपनी आजीविका के लिए पशुपालन की तरफ देखते हैं। मिश्रित खेती का सबसे अच्छा फायदा यह है कि इसमें हम अपने खेतों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। फसलों के बचे हुए अवशेष पशुओं को खिला सकते हैं, और पशुओं का गोबर और गौमूत्र खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के काम आती है। आमतौर पर छोटी कृषि योग्य भूमि और कम संसाधनों वाले किसानों के लिए मिश्रित खेती बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। भाई घर परिवार के भरण पोषण के लिए खेतों से अनाज सब्जियां उगाकर हम अपना गुजारा करते हैं, साथ में गाय, भैंस और बकरी पालकर अपनी आजीविका चला सकते हैं। किसान साथियों, भूमि, जल और अन्य कृषि संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करके एक मेहनती किसान मिश्रित खेती से बहुत लाभ ले सकता है। कुल मिलाकर किसान साथियों, मिश्रित खेती छोटे और बड़े सभी किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। जी हाँ साथियों, कम खेती वाले किसानों पर तो हमने चर्चा की कि भाई खेती और पशुपालन करके बकरी पालन, मुर्गी पालन कर खेतीबाड़ी के साथ साथ अन्य आमदनी के स्रोत बना सकते हैं, साथ में जैविक खेती करके अच्छा कृषि उत्पादन भी ले सकते हैं। पर जिन पर बहुत ज्यादा खेती है वे किसान भी मिश्रित खेती से अच्छा लाभ ले सकते हैं। खेतों के बड़े भाग पर अनाज, फल और सब्जी उगाकर लाभ कमाए, साथ में छोटे भाग पर पशुओं के लिए चारा उगाकर पशुपालन करके दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन से भी लाभ कमा सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, हमारी सरकार भी मिश्रित खेती को बढ़ावा दे रही है। जैसे कि किसी किसान को गौपालन करना है तो किसान पर कितनी जमीन है उसके आधार पर गाय खरीदने के लिए ऋण देती है और पशुपालन में मदद करती है। किसान भाइयों, अपनी खेती में हम ध्यान रखते हैं कि अच्छा बीज बोएं, खाद पानी ठीक से देते रहें, तब कहीं जाकर अच्छी फसल होती है। ऐसे ही अपने पशुओं से अच्छा दुग्ध उत्पादन लेना है तो उनके टीकाकरण और उनके खान पान का ध्यान हमें रखना चाहिए, तभी हम कृषि और पशुपालन दोनों से अच्छा लाभ ले पाएंगे। इसीलिए साथियों, मिश्रित खेती करें और कृषि से लाभ कमाएं और समृद्ध बने। किसान भाइयों, आपके साथ हम अपने कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन

0: उससे पहले आइए एक छोटा सा विराम ले लेते हैं और मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: किसान साथियों, हम किसान अपने खेतों से अच्छी फसल लेने के लिए खूब मेहनत करते हैं, साथ में समय पर खाद पानी भी देते हैं और मौसम भी ठीक रहे फिर भी हमें उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, तो फिर हमसे कहाँ चूक हो रही है। अच्छे उत्पादन के लिए किसान साथियों, हमें बेहतरीन और नई किस्मों के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए तो हमारी उत्पादन क्षमता खेतों की बढ़ जाती है, जो कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जाते हैं। भारत में विशेष रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और अन्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अनाजों, फलों और सब्जियों की नई उन्नत और विकसित किस्मों जो हैं बनाई जाती हैं। इन नई किस्मों का उद्देश्य पैदावार बढ़ाना, बीमारियों से बचाव, सूखा सहन करना और पोषण को बेहतर बनाना है। साथियों, अनाज में गेहूं की ICAR ने ऐसी किस्म विकसित की है जो देर से बोए जाने पर भी उच्च तापमान में अच्छा उत्पादन देती है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने धान की 2025 में सूखे के प्रति सहनशील किस्में CO59 और पतले दाने वाली ADT56 ADT60 किस्में विकसित की हैं। ऐसे ही बाजरा की पूसा कंपोजिट 701 नई किस्म है जो रोग प्रतिरोधी तो है ही साथ में उत्पादन भी अच्छा देती है। किसान साथियों, सब्जियों में मटर की काशी उदय और काशी नंदनी नई और बेहतर किस्में हैं। लौकी की कोंकण श्वेता और कोंकण तारा अच्छी उपज देने वाली नई किस्में हैं। ऐसे ही फूलगोभी की CFL 1522 ऐसी नई किस्म है जो मार्च और अप्रैल के लिए है और यह गर्मियों में भी बहुत आसानी से उगाई जा रही है। किसान साथियों, अनाज और सब्जियों की तरह ही फलों में जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय ने आम, नारियल, चीकू और अनार की नई किस्में विकसित की हैं जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के लिए बेहतर हैं। साथियों, कृषि में अनाज, सब्जी और फलों की नई किस्मों से बेहतर उत्पादन मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है जिससे बीमारियों से रक्षा होती है। इन नई किस्मों में पुरानी किस्मों की तुलना में सूखा और गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। तो किसान साथियों, बेहतर कृषि के लिए अनाज, फल और सब्जियों की नई किस्मों का प्रयोग करें और अधिक लाभ कमाएं। साथियों, हर क्षेत्र में नए वैज्ञानिक तरीकों और नई तकनीकों का उपयोग करके विकास किया जा रहा है, तो भाई हमारी कृषि क्यों पीछे रहे। किसान भाइयों, अपनी कृषि को बेहतर बनाने के लिए अनाज, फल और सब्जी की नई किस्मों का उपयोग करें और अत्यधिक लाभ कमाने की ओर अपने कदम बढ़ाएं। आपके साथ अपने कार्यक्रम को हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपका संगीतमय मनोरंजन करवाते हैं। और इस भीषण गर्मी में, हालांकि एक दो दिन बरसात हुई है, पर देखिए भाई गर्मी भी तो बहुत पड़ रही है, तो इस भीषण गर्मी में महावीर सिंह चाहर से सुनते हैं कि उनका कैसे गर्मी ने धन्ना बिगाड़ दिया। आनंद लेते हैं इस मधुर लोकगीत का।

0: किसान भाइयों, आज के इस महंगाई के दौर में सिर्फ खेती किसानी से बहुत लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए भाई खेती किसानी के साथ साथ दूसरे रोजगार धंधों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारी वार्ता में डॉक्टर आरपी अग्रवाल आपको बता रहे हैं कि कैसे सफल उद्यमी बन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं यह वार्ता।
1: ग्रामीण किसान भाइयों, आज के समय में रोजगार की बड़ी समस्या है। काफी संख्या में पढ़े लिखे ग्रामीण बेरोजगार युवक रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करते हैं, जिससे शहरों में रहने आदि की समस्या हो जाती है। वह शहर में जाकर किसी कारखाने आदि में नौकरी करने लगते हैं, जबकि इनकी आवश्यकता शहर से ज्यादा गाँव में है। गाँव में रहकर के ये पढ़े लिखे ग्रामीण बेरोजगार युवक गाँव में अपना खुद का कृषि उद्यम शुरू कर सकते हैं। गांव में अपना खुद का कृषि उद्यम शुरू करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र में साधन गांव में ही आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे हम अपना रोजगार कर लाभ कमाने के साथ साथ दूसरे अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार देने में सहयोग प्रदान कर गांव व देश के विकास में भागीदार हो सकते हैं। कृषि उद्यमों में खेती किसानी में काम आने वाले विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे खादों, उर्वरकों, कृषि रसायनों आदि की बिक्री। आज गांव में सबसे ज्यादा किसानों को अच्छी गुणवत्ता की खादों,

उर्वरकों, कृषि रसायनों आदि का उचित कीमत पर न मिलना है। यदि आप अच्छी गुणवत्ता की खादों, उर्वरकों, कृषि रसायनों आदि को उचित कीमत पर किसानों को समय पर उपलब्ध करा दें, तो आपको तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही दूसरे व्यक्तियों को भी रोजगार देने में मदद मिलेगी। जैविक उर्वरकों, पेस्टिसाइड व वायु कंट्रोल एजेंट्स का उत्पादन व इस व्यवसाय के तहत आप जैविक उर्वरकों, पेस्टिसाइड व वायु कंट्रोल एजेंट्स का उत्पादन व बिक्री का कार्य करके खुद का रोजगार प्राप्त कर दूसरे व्यक्तियों को रोजगार देने के साथ साथ आप किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। बीज उत्पादन एवं संसाधन। यदि हम किसानों को अनाजों, दलहनों व तिलहनों आदि के अधिक उत्पादन देने वाले उन्नतशील प्रजातियों के बीज समय पर उपलब्ध करा दें, तो किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। किसानों को उन्नतशील प्रजातियों के अधिक उपज देने वाले बीजों की उपलब्धता मांग के अनुसार 1/4 के बराबर है, इसलिए आप अनाजों, दलहनों व तिलहनों के बीज किसानों के तैयार कराने का व्यवसाय शुरू कर अपने लिए रोजगार के साथ ही आप अन्य व्यक्तियों को रोजगार देने में सहायक हो सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन व बिक्री। कृषि में आज के परिवेश में जैविक खेती पर बल दिया जा रहा है। जैविक खेती करने के लिए जैविक खादों जैसे वर्मी कंपोस्ट आदि की आवश्यकता होती है। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करके बिक्री कर आप रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। नर्सरी उत्पादन व बिक्री। सब्जियों, फलों, फूलों, शोभाकारी पौधों आदि की नर्सरी तैयार कर पौध की बिक्री कर आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही आप बेमौसम की सब्जियों को पॉली हाउस में पैदा कर बिक्री करके काफी लाभ अर्जित कर सकते हैं। ये व्यवसाय कम पूंजी में भी शुरू किए जा सकते हैं। डेयरी उद्योग, बकरी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन आदि। कृषि के सहायक उद्योग धंधों जैसे डेयरी उद्योग, बकरी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, बटेर पालन आदि कृषि उद्योग धंधे एक अच्छी खासी आमदनी देने वाले व्यवसाय हैं। इन व्यवसायों में मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है। इन कृषि उद्योगों को स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार देने के साथ ही खुद भी लाभ कमाकर अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं। पशु आहार तैयार करके बिक्री करने से भी लाभ कमाया जा सकता है। पशु आहार तैयार करने के लिए कच्चा माल आसानी से गांव में ही उपलब्ध हो जाता है। पशुओं का उत्पादन बढ़ने से गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। मधुमक्खी पालन व शहद प्रोसेसिंग कृषि उद्योग लगाने से आमदनी बढ़ने व रोजगार के और अधिक अवसर मिलने के साथ ही फसलों में निषेचन क्रिया अच्छी होने से कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। आज के समय में लोगों का रुझान मशरूम खाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मशरूम का उत्पादन घर पर ही थोड़ी सी जगह पर आसानी से किया जा सकता है। मशरूम की बिक्री कर आप अपने साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार देने में सहायक होंगे। आज देश में परिवारों के बिखराव होने के कारण खेती हेतु जोत का आकार छोटा होता जा रहा है। वह कृषि में मशीनीकरण के कारण मशीनों की आवश्यकता बहुत होने लगी है। हर किसान कृषि यंत्रों की खरीदारी नहीं कर सकता, इसलिए कृषि यंत्रों को किराए पर लेने की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप कृषि यंत्रों का उत्पादन, रखरखाव व किराए पर देने संबंधी कार्य करके आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी उत्पाद का मूल्य संवर्धन कर अधिक लाभ लिया जा सकता है व रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं। जैसे विभिन्न सब्जियों को अचार, सॉस, चिप्स बनाकर बिक्री करना, फलों से अचार, मुरब्बा आदि बनाना, दूध को दही, पनीर, घी, मट्ठा बनाकर गेहूं से आटा, दलिया, मैदा, सूजी बनाना, चना, अरहर, मूंग, उड़द आदि से दाल, बेसन, सरसों, सूरजमुखी, तिल व सोयाबीन, मूंगफली आदि से तेल, खली आदि बनाकर बिक्री करने से रोजगार के काफी अवसर पैदा करने के साथ ही लाभ भी बढ़ जाता है। सब्जियों व फलों की बाजार में बिक्री करने से पहले उनकी छटाई, ग्रेडिंग व अच्छी पैकिंग करने से उनका मूल्य अधिक प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य में रोजगार के काफी अवसर पैदा किए जा सकते हैं। हमारे देश व गांवों में अधिकतर लोग देशी दवाओं व सुगंध के उपयोग का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। औषधि और सुगंध पौधों की मांग रोजाना बढ़ती जा रही है, इसलिए आप इन पौधों की खेती व उनका प्रसंस्करण व बिक्री कर लाभ अर्जित करने के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। आप पर्यटन की तरह आप कृषि पर्यटन को बढ़ावा देते हैं तो रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। कृषि सलाह देना। कृषकों को खेती में आने वाली अनेकों समस्याएं जैसे फसलों की विभिन्न प्रजातियों की जानकारी, फसलों में लगने वाले रोग, कीट तथा तत्वों की कमी के कारण फसलों में दिखाई देने वाले लक्षणों की जानकारी किसानों को देने हेतु भुगतान आधारित कृषि सलाह देने का कार्य कर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इस तरह आप अपनी खुद का कृषि उद्यम शुरू कर सफल कृषि उद्यमी बनने

0: के साथ साथ आप आसपास के बेरोजगार लोगों को भी रोजगार देने वाले बन सकते हैं। साथियों, उपरोक्त सभी कार्यों के बारे में प्रशिक्षण लेने व सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी करने हेतु आप डॉक्टर आरपी अग्रवाल, नोडल अधिकारी, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 21 केंद्रीय हिंदी संस्थान नगर, खंदारी, आगरा, अथवा मोबाइल संख्या 9412300655 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: श्रोताओ, अभी आपने हमारी वार्ता में डॉक्टर आरपी अग्रवाल से सुना कि कैसे बने कृषि में सफल उद्यमी। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। और आइए अब हम आपको बताते हैं आज और कल के मौसम के बारे में। आज का अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओ, अब हमारे कार्यक्रम में वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए आपका संगीत में मनोरंजन करवाते हैं इस गर्मी में और आनंद लेते हैं मधुर लोकगीत का।

जी हाँ श्रोताओ, गर्मी का मौसम है तो भाई गर्मी तो लगी रही है, तो अपना ध्यान रखें और अपने पशुओं का भी ध्यान रखें। आज के ग्राम्य लोक कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की यशपाल सिंह को आज्ञा दें। आप सबको हमारी राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपकी रेडियो साथी रिंकू चौरसिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही खास कार्यक्रम मजदूर मंडल में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब भाई? आप लोग इस तपती गर्मी में अपना ख्याल तो अच्छे से रख रहे हैं ना? क्योंकि भाई देखो, मौसम चाहे जो भी हो, उसमें अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, और तभी हम खुशहाल जीवन जी पाते हैं, है ना साथियों? ठीक कहा ना मैंने? तो चलिए साथियों, कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे की ओर और बात करते हैं सभ्यताओं के बीच संवाद की। क्योंकि साथियों, आज है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि आज ही के दिन यानी कि 10 जून को विश्व भर में विभिन्न देशों, संस्कृतियों, धर्मों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा विश्व अनेक प्रकार की सभ्यताओं, भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों से मिलकर बना है, जहां प्रत्येक सभ्यता की अपनी अलग विशेष पहचान, इतिहास और जीवन शैली होती है, जिन विविधताओं के कारण ही हमारा संसार सुंदर और समृद्ध बनता है। लेकिन साथियों, परेशानी तब होती है जब लोग एक दूसरे की संस्कृति और विचारों को समझने का प्रयास ही नहीं करते, और तब गलतफहमियां, संघर्ष और विवाद और भी ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण हम वर्तमान में चल रहे दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध के द्वारा देख ही पा रहे हैं, जिसका कारण सभ्यताओं यानी कि उन देशों के बीच सही उचित संवाद का होना है। साथियों, जिसका बेहद सही संवाद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों, इस तरह के युद्धों से केवल उन देशों का विनाश होता है और सबसे अधिक प्रभाव वहाँ की आम जनता पर पड़ता है। इसलिए साथियों, हमें

सभ्यताओं के बीच संवाद का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि सभ्यताओं के बीच संवाद का अर्थ ही होता है कि विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के लोग एक दूसरे के विचारों, मान्यताओं और जीवन मूल्यों को समझने का प्रयास करें। इसी के साथ संवाद हमें यह भी सिखाता है कि भिन्नता कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम दूसरों को सम्मान करते हैं तब हम एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। और साथियों, आज के वैश्वीकरण के युग में तो दुनिया पहले से कई और ज़्यादा आपस में जुड़ती जा रही है। आज इंटरनेट, संचार और परिवहन के आधुनिक साधनों ने तो देशों के बीच की दूरियां कम कर दी हैं। ऐसे समय में साथियों, विभिन्न सभ्यताओं के बीच सहयोग और समझ बढ़ाने की आवश्यकता अब और अधिक है, क्योंकि साथियों, जब हम एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तभी तो हम विश्व में शांति और भाईचारे को बढ़ावा दे सकेंगे, जिसका उदाहरण हम अपने भारत देश से ले सकते हैं। क्योंकि साथियों, हमारे भारत देश में ही अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं सदियों से साथ साथ फलती फूलती आ रही हैं। जहां वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है, और उसका संदेश हम सभी को एक विचारधारा से जोड़कर अलग दुनिया में ले जाता है। और साथियों, इस विचार को हम सभी लोगों के प्रति सम्मान, प्रेम और सहयोग की भावना रखने की प्रेरणा देता है। साथियों, सभ्यताओं के बीच संवाद में केवल सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम सभी को अपने दैनिक जीवन में दूसरों के विचारों को सुनने के साथ साथ उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और भेदभाव से दूर रहना चाहिए। और साथियों, इस पहल में हमारे शहर के आसपास विद्यालय, महाविद्यालय और सामाजिक संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। साथियों, आज दुनिया अनेक चुनौतियों और कई समस्याओं का सामना कर रही है, और जिसका समाधान केवल संवाद, सहयोग और आपसी सम्मान के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि जब लोग आपस में बातचीत करते हैं तभी समस्याओं का समाधान निकलता है और विश्वास मजबूत होता है, है ना साथियों? तो साथियों, आइए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हम सब भी संकल्प लें कि हम सब भी संस्कृतियों और सभ्यताओं का सम्मान करेंगे, भेदभाव से दूर रहते हुए विश्व में शांति, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने में अपना सहयोग देंगे। और चलिए साथियों, इसी चर्चा के साथ अब पूछ लेते हैं आपसे आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, इस प्रश्न का जवाब हम आपको अपने कार्यक्रम के मध्य में देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और अब समय है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये मधुर गीत।

साथियों, इस मधुर गीत के बाद अब बात कर रहे हैं हम ज्ञान सागर की, जिसमें साथियों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राष्ट्रीय उद्यान की जो कि अपनी जैव विविधता, घने जंगल एवं दुर्लभ वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, जिसको वर्ष 1958 में बारहसिंगा के लिए एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। साथियों, बात करें इसके क्षेत्रफल की तो साथियों, यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ घने साल के जंगल, हरे भरे घास के मैदान, दलदली क्षेत्र और अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव संरक्षण के लिए विशेष महत्व रखता है। साथियों

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ कई तरह के दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनमें बाघ, तेंदुआ, बारहसिंघा, हिरन, हाथी, जंगली सुअर और गैंडे जैसे अनेक पशु पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसमें यह पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और साथियों, जिन्हें देखने के लिए हज़ारों की संख्या में हर रोज़ यहाँ लोग

0: बढ़ रहा है, तब ऐसे में राष्ट्रीय उद्यानों का महत्व अब और भी बढ़ जाता है, और इसलिए हम सबको भी इस तरह की धरोहरों का संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि साथियों, इस तरह के राष्ट्रीय उद्यान केवल प्रदेश या राज्य नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव होते हैं। इसलिए हमें इस तरह के राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करने एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। और चलिए साथियों, इसी चर्चा के साथ ही अब हम बता देते हैं आपको आज के प्रश्न का जवाब। साथियों, आज का प्रश्न था कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, जिसका जवाब है 12 जून को। जी साथियों, 12 जून यानी कि परसों के दिन ही यह दिवस बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा, जिसको मनाने का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की समस्या के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, बाल श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर करना और दुनिया भर से बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना है, जो कि बहुत सही और ज़रूरी पहल भी है। क्योंकि साथियों, बच्चों को हमारे देश का भविष्य माना जाता है, और जब बच्चे ही इस तरह समस्या से पीड़ित रहेंगे तो फिर कैसे हम अपने देश को आगे बढ़ता देख सकेंगे। इसलिए साथियों, हम सभी को इसके प्रति जागरूक होना होगा और अपने देश के भविष्य को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। साथियों, वक्त है एक विराम का, जल्द हाजिर होते।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आपको गीत संगीत तो सुनने को ही मिलता है, साथ ही जरूरी चर्चा पर भी बातचीत की जाती है। लेकिन साथियों, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आज का काव्य पाठ, जिसमें बेहद सुंदर और करुणापूर्ण रचनाएं आपको सुनने को मिलेगी। तो आइए साथियों, सुनते हैं काव्य पाठ, जिसके कवि हैं हरीश कुमार सिंह भदौरिया।
5: आकाशवाणी आगरा के सभी श्रोताओं को प्रणाम। मित्रों, भक्ति की शक्ति का हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव, इसी से संबंधित चंद रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

कर लेते हैं आपकी सेहत की। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय गर्मी अपना प्रचंड रूप धारण किए हुए है, जिससे हर कोई परेशान है। और ऐसे गर्म मौसम में कई लोगों को त्वचा संबंधित परेशानी, जैसे त्वचा में जलन, घमोरियाँ होना, फंगल इन्फेक्शन और मुहासे आदि होने लगते हैं। साथियों, इस तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए यहाँ बताए जा रहे कुछ घरेलू नुस्खों को यदि आप सही तरीके से अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक आप इस तरह की समस्या से निजात पा सकेंगे। साथियों, इस गर्म मौसम में यदि किसी को त्वचा में जलन होने की समस्या हो तो वे चंदन और गुलाब जल का लेप लगा सकते हैं, क्योंकि चंदन की तासीर ठंडी होती है, जिससे गुलाब जल में मिलाकर लगाने से त्वचा की जलन घमोरियों में भी काफ़ी आराम मिलता है। इसी के साथ साथ किसी को खुजली, फंगल इन्फेक्शन आदि हो तो वे नीम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप नीम के पत्तों को पानी में उबालकर नॉर्मल होने पर उस पानी से नहाएं। साथियों, इस तरह नीम के पानी से नहाने पर फंगल इन्फेक्शन और खुजली आदि ज़रूर दूर होगी। वही साथियों, यदि किसी को इस गर्मी के मौसम में मुहासे हो रहे हैं या वो अपने मुहासों से परेशान हैं तो वे बर्फ़ की सेकाई का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप एक सूती कपड़े में बर्फ़ का टुकड़ा लपेटकर मुहासों पर 5 मिनट तक रखें। ऐसा करने से मुहासों की लालिमा और सूजन दोनों ही तुरंत कम होगी। तो साथियों, ये थी आपकी सेहत से जुड़ी कुछ घरेलू नुस्खे। और अब वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये मधुर गीत।

0: तो साथियों इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने रेडियो साथी रिंकू चौरसिया को। नमस्कार।
1: अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल, मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7 बजने को है हमारा अगला प्रसारण। दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों के निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी के राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार

0: सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के दो सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ICC ने डॉक्टर सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: स्प्रे करिएगा तो मौत आपका मर जाएगा। और एक आती मेट सल्फ्यूरॉय मिथाइल, हाँ, वो 8 ग्राम।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। The National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. The Union Cabinet today passed resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions.
3: प्रधानमंत्री जी, युवा शक्ति को भारत
4: प्राइम मिनिस्टर कंसिडर्स द यूथ ऑफ इंडिया एज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट एसेट, देयरफॉर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल प्रोग्राम्स विद स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिटनेस। एज अ रिजल्ट, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर स्पोर्टिंग नेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एंड हैज डेमोंस्ट्रेटेड रिमार्केबल साइंटिफिक केपेबिलिटीज थ्रू मिशंस सच एज चंद्रयान।
3: क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
2: Mr. Vaishnaw said the cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometer long metro corridor with 5 stations. He said the cabinet also approved central government office complex and central government residential complex in Amravati in Andhra Pradesh. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. The government has approved extension and validity of the credit guarantee scheme for microfinance institutions 2.0 up to the 31st of August this year, or till guarantees for an amount of 20,000 crore rupees are issued. The Ministry of Finance said that as on date, loans totaling to 770 crore rupees have been sanctioned under the scheme. The scheme

0: aims to provide credit guarantee support through National Credit Guarantee Trustee Company Limited to strengthen lending of microfinance institutions and facilitate increased credit flow of up to 20,000 crore rupees to non-banking financial company microfinance institutions. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. India attracted cumulative foreign direct investment FDI inflows worth $843 billion between 2014-15 and 2025-26, registering a 169% increase over the previous 12-year period. According to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, India recorded a historic FDI inflow of over $94 billion in 2025-26 despite global economic uncertainties. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today visited the National Historical Museum at Sofia in Bulgaria. In a social media post, Dr. Jaishankar said he explored its remarkable collection of artifacts spanning millennia and gained a deeper appreciation of how Bulgaria has preserved the many facets of its rich history and cultural heritage. And in badminton, P.V. Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's Ines Castillo 21-13, 21-11 in the first round clash of the tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हो चुके हैं। वक्त हो चुका है कार्यक्रम विविधा का। श्रोताओं, आज है सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इसी पर आधारित है हमारी आज की वार्ता, जिसका विषय है सभ्यताओं के पोषण के लिए शस्त्र नहीं संवाद जरूरी। आलेख प्रोफेसर सुगम आनंद का, स्वर प्रशांत सत्संगी का। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: वसुधैव कुटुंबकम भारतीय चिंतन का वह शाश्वत संदेश है जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां एक ओर प्रौद्योगिकी की प्रगति ने दुनिया को अभूतपूर्व रूप से जोड़ दिया है, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक तनाव, धार्मिक कट्टरता, युद्ध और असहिष्णुता जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। ऐसे समय में सभ्यताओं के बीच संवाद केवल एक आदर्श नहीं बल्कि वैश्विक शांति और मानव अस्तित्व की आवश्यकता बन गया है। सभ्यता किसी समाज की भौतिक उपलब्धियों, सांस्कृतिक मूल्यों, ज्ञान परंपराओं और जीवन दृष्टि का समग्र रूप होती है। विभिन्न सभ्यताओं के बीच विचारों, अनुभवों और मूल्यों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही सभ्यताओं का संवाद कहलाती है। यह संवाद मानवता को विभाजन नहीं बल्कि साझा विरासत और साझी नियति का बोध कराता है। इतिहास का अध्ययन बताता है कि मानव सभ्यता का विकास अलगाव में नहीं बल्कि निरंतर संवाद और आदान प्रदान के माध्यम से हुआ है। प्राचीन व्यापारिक मार्गों, विशेषकर रेशम मार्ग, सिल्क रूट ने केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि विचारों, धर्मों और तकनीकों का भी आदान प्रदान सुनिश्चित किया। भारत से बौद्ध धर्म का चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रसार, अरब विद्वानों द्वारा यूनानी दर्शन और विज्ञान का अध्ययन तथा यूरोप में पुनर्जागरण का उदय, ये सभी सभ्यताओं के रचनात्मक संवाद के उदाहरण हैं। इतिहास यह सिद्ध करता है कि महान सभ्यताएं तब विकसित हुईं जब उन्होंने बाहरी विचारों को ग्रहण करने और उनसे सीखने का साहस दिखाया। सभ्यताओं के बीच संवाद का मूल आधार यह स्वीकार करना है कि सत्य और ज्ञान किसी एक संस्कृति या समाज का एकाधिकार नहीं है। प्रत्येक सभ्यता मानव अनुभव के किसी न किसी पक्ष को अभिव्यक्त करती है। भारतीय दर्शन का एकन सद्विप्रा

0: बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है परंतु ज्ञानी जन उसे विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं, संवाद की इसी भावना को व्यक्त करता है। संवाद का उद्देश्य समानता स्थापित करना नहीं बल्कि भिन्नताओं के बीच सम्मान और समझ विकसित करना है। आज विश्व अभूतपूर्व रूप से परस्पर जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, प्रवासन और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। इनका समाधान किसी एक राष्ट्र या सभ्यता द्वारा संभव नहीं है। सभ्यताओं के बीच संवाद, शांति और सह अस्तित्व के लिए, ज्ञान और नवाचार के लिए वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि के समाधान के लिए तथा मानव गरिमा और बहुलतावाद की रक्षा के लिए आवश्यक है। संवाद परस्पर विश्वास का निर्माण करता है और संघर्ष की संभावनाओं को कम करता है। संवाद विविधताओं के सम्मान को प्रोत्साहित करता है और यह स्वीकार करता है कि भिन्नता किसी समाज की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति है। भारत प्राचीन काल से ही बहुलता और सह अस्तित्व की भूमि रहा है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों ने सहस्त्राब्दियों तक परस्पर संवाद करते हुए विकास किया है। आधुनिक काल में भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संवाद आधारित विश्व व्यवस्था का समर्थन किया है, चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, पंचशील के सिद्धांत हो या वसुधैव कुटुंबकम का वैश्विक संदेश। भारत ने सभ्यताओं के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, परंतु वर्तमान में इसके समक्ष कई गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं, विशेषकर सांस्कृतिक श्रेष्ठता बोध और वर्चस्ववादी प्रवृत्तियां, धार्मिक कट्टरता और पहचान आधारित राजनीति, गलत सूचना और डिजिटल दुष्प्रचार, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं तथा राष्ट्रवाद का उग्र स्वरूप। जब संवाद समानता और सम्मान के बजाय प्रभुत्व के आधार पर संचालित होता है, तब वह अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। सभ्यताओं के बीच संवाद को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देना आवश्यक है। युवाओं में वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित की जानी चाहिए। डिजिटल माध्यमों का उपयोग विभाजन नहीं बल्कि समझ और सहयोग को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। सभ्यताओं के बीच संवाद मानवता की साझा नियति को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। इतिहास यह सिखाता है कि सभ्यताओं की महानता उनकी सैन्य शक्ति में नहीं बल्कि संवाद, सहिष्णुता और आत्मविस्तार की क्षमता में निहित होती है। आज जब विश्व अनेक जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब सभ्यताओं के बीच सार्थक संवाद ही शांति, न्याय और सतत विकास का सबसे विश्वसनीय मार्ग है। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की खिड़कियां बंद हों, मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवाएं स्वतंत्र रूप से मेरे घर में आएं, किंतु मैं उनसे उड़ न जाऊं। यही भावना सभ्यताओं के बीच संवाद का सार है। अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरों से सीखना और मानवता के साझा भविष्य का निर्माण करना। 21वीं सदी में सभ्यताओं का भविष्य संघर्ष में नहीं, संवाद में निहित है। सभ्यताओं के बीच संवाद ही समझ और शांति का सेतु है। विविधताओं से भरे इस विश्व में शांति, समृद्धि और सतत विकास तभी संभव है जब हम विभिन्नताओं को विभाजन का आधार नहीं बल्कि पारस्परिक सीख और सहयोग का अवसर माने। सभ्यताओं के बीच संवाद वास्तव में मानवता के साझा भविष्य की आधारशिला है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, सभ्यताओं के पोषण के लिए शस्त्र नहीं संवाद जरूरी। आलेख प्रोफेसर सुगम आनंद का था, स्वर प्रशांत सत्संगी का। रीडिंग वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता, एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
3: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
1: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48,00,000 रुपये धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो

0: जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त हो चुका है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। इतिहास गवाह है कि जब जब सभ्यताओं ने संवाद का मार्ग अपनाया, तब तब ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन जब संवाद की जगह टकराव ने ली, तब संघर्ष और विभाजन बढ़े। सभ्यताएं केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि ये हमारी पहचान है। संस्कृति परंपराओं और मूल्यों का जीवंत अभिव्यक्ति है। जब सभ्यताएं एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का प्रयास करते हैं, तभी तो वैश्विक सद्भाव और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रोताओं, आज है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो भाषाएं भले अलग हों, भाव एक होते हैं। संस्कृतियां भले ही भिन्न हों, मानवता के रंग अनेक होते हैं। संवाद की डोर जब दिलों को जोड़ती है, तभी सभ्यताओं की सच्ची पहचान उभरती है।

श्रोताओं, आज के युग में विज्ञान और तकनीक ने दूरियों को खत्म कर दिया है, लेकिन दिलों के बीच की दूरी को कम करने का काम तो संवाद ही कर सकता है। भारत की संस्कृति सदैव से सहिष्णुता, समावेशिता और संवाद की पक्षधर रही है। हमारे देश ने दुनिया को अहिंसा, सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम जैसे अमूल्य विचार दिए हैं। श्रोताओं, सभ्यता के बीच संवाद का अर्थ केवल बातचीत नहीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों, परंपराओं और जीवन मूल्यों को समझना और उनका सम्मान करना है। रंग अलग है, रूप अलग है, फिर भी सबकी पहचान एक है। मानवता की इस धरती पर संवाद ही सबसे नेक है।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और आज हम बात कर रहे हैं सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर बातचीत। श्रोताओं, भाषाएं भले ही अलग हों, भाव एक होते हैं। संस्कृति भले ही भिन्न हो, मानवता के रंग अनेक होते हैं। संवाद की डोर जब दिलों को जोड़ती है, तभी सभ्यताओं की सच्ची पहचान उभरती है। श्रोताओं, आज की आवश्यकता है कि हम भिन्नताओं को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझें। विविधता ही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी पूंजी है।

श्रोताओं, आज का युवा वर्ग डिजिटल युग का प्रतिनिधि है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे संवाद, सहिष्णुता और सम्मान की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, उसके विचारों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हुए मतभेदों के बावजूद सौहार्द बनाए रखते हैं, तभी तो सच्चे अर्थों में सभ्यताओं के बीच संवाद स्थापित होता है।

श्रोताओं, आइए आज इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम भाषा, धर्म, संस्कृति और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता देंगे। हम विविधताओं का सम्मान करेंगे। हम संवाद के माध्यम से प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे और एक ऐसे विश्व के निर्माण में योगदान देंगे जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और हर आवाज को सुना जाए। जहां संवाद है वहां समाधान है, जहां सम्मान है वहां सद्भाव है, और जहां सद्भाव है वहीं मानवता का उज्जवल भविष्य है।

श्रोताओं, बातचीत से रास्ते निकलते हैं, खामोशियां अक्सर दीवारें बनाती हैं। दिल से दिल जब जुड़ते हैं संवादों के संग, तभी सभ्यताएं नई इबारत लिखती हैं। तो श्रोताओं, इन्हीं चंद बातों के साथ दीजिए अनुमति इस वादे के साथ, कल फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो साथी पूनम कुलश्रेष्ठ का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, 8 बज चुके हैं, वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक और अनेक का। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। कार्यक्रम में एक आवाज आज आप सुनेंगे शब्बीर कुमार की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, प्यार झुकता नहीं फिल्म से। आवाजें शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की है, शब्द रचना SH बिहारी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अरे भाई जल्दी चलो, बस निकल जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, बस निकल जा, लेकिन अब है।

श्रोताओं, गुलामी फिल्म से ये गीत आपने सुना शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे थे गुलजार ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं बप्पी लाहिरी के संगीत निर्देशन में अनजान का गीत शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, आज का अर्जुन फिल्म से।

श्रोताओं, कुली फिल्म से ये गीत आपने सुना शब्बीर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का गीत शब्बीर कुमार की आवाज में, बेताब फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में बेताब फिल्म से ये गीत आपने सुना शब्बीर कुमार की आवाज में। वो लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही कार्यक्रम एक और अनेक यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, ये एक बार फिर से रुक करते हैं फिल्म संगीत की ओर और सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं जख्म फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है एम एम करीम ने।

श्रोताओं, गैंगस्टर फिल्म से ये गीत आपने सुना जुबीन के स्वर में। सईद कादरी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं संदेश सांडिल्य के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का गीत, सोनू निगम और संजीवनी की आवाजों में, सोचा न था फिल्म से।

सोनू निगम और संजीवनी की आवाजों में। इरशाद कामिल की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था संदेश शांडिल्य ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी

0: काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई

0: ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों

0: का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amaravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advance to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai, jab sahi niyat se sarkar chalti hai, to tej gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है। और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन-जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है

0: His aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. Zameer Razvi se khabrein suniye. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। वजारत दिफा पैरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफे के लिए 20 एडवांस्ड जैमर्स खरीदेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दिलाया कि मुल्क की 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को यकीनन पूरा किया जाएगा और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के एतमाद को मुस्तहकम किया है। जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के आवाम ने कांग्रेस की एतमाद शिकनी के बाद एनडीए सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क के आवाम ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला जाना इस बात का इजहार है कि एनडीए की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है।
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने तवील अरसे तक अपनी खिदमत करने का मौका फराहम किया।
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे, इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी विकसित भारत का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब अब किसी एक फर्द, हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की इक्तिसादी और ढांचा जाती इस्लाहात नजरियाती यकीन का नतीजा है, न कि सियासी मजबूरी का।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
1: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए

0: ये कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर अजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर अजम के तौर पर मुसलसल खिदमात अंजाम देने का जश्न मनाने के लिए मुनद हुई थी। करारदाद पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर अला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब होने वाले वजीर अजम नरेंद्र मोदी को ये एक तारीखी खराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबीना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वजीर अजम नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फरायज अंजाम देने वाले वजीर अजम बनने पर सताइश की गई है। बतौर वजीर अजम मजमुई तौर पर 4,399 दिन तक लगातार खिदमात अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 4,398 दिन तक फराइज अंजाम दिए थे। काबिना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के तई जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है और कई अहदबस्तगियों और हसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के तई हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और ये फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस दौरान मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी दी जो कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर का अहाता करेगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर का हो जाएगा जिससे हवाई अड्डे के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और आवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के 2 बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क्यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के आवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वजीर आजम मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिस्किन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने बरसों से भारत की इकतसादी और तरक्याती पेशरफ की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वजीर आजम टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ने वजीर आजम मोदी की क्यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाई के, पपुआ न्यूगिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वजीर आजम मोदी की बदलाव की हुक्मरानी, आलमी खिते जुनूब के लिए उनकी कोशिशों और सबकी शमूलियत और इकतसादी

0: एतबार से गुनागुनियत वाले भारत के विजन को सराहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
2: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1,60,00,000 से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरीरनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप्स कायम किए गए हैं, जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। पीएम सेतु स्कीम के तहत 1,000 आईआईटीज की जदीद कारी के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम पीएलआई के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरखास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर का अंदाजा है। मंजूरशुदा दरखास्त गुजार पीएलआई स्कीम के अहम शोबों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं, जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 770 करोड़ रुपए के कर्जे जात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निजाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। وزیراعظم نریندر مودی نے یقین دلایا ہے کہ 140 کروڑ بھارتیوں کی آرزویں ضرور

पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में PV सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प, साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए,

0: लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांधकर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहां, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर

0: तरीकों को बदलकर, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
1: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने आप किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
0: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक, इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं मिली। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं, वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें, इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग

देशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, सीधे एक एक व्यक्ति के, और शायद विश्व का सबसे बड़ा

0: शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है, बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश, और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा हुआ पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यदि कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है, उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे

0: बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है, या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर हर सेक्शन की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया, अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा उनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र जो राम मंदिर का अयोध्या में जो

0: निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल, विकसित भाव ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारत के भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: चर्चा का विषय है।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, जिसमें हम सुनवाते हैं आपकी पसंद के गाने आपकी फरमाइश पर। कार्यक्रम में संवादक हैं गरिमा शाक्य, प्रस्तुति अनिंद्र सिंह की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद।
2: स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में, जहां बजते हैं आपकी पसंद के गीत और सजती है सुरों की एक खूबसूरत महफिल। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ ऐसी धुनों के साथ जो यादों को भी छू जाएंगी, दिल में मुस्कान भी भर देंगी और कुछ पल आपको संगीत की दुनिया में ले जाएंगी। तो चलिए रोज़मर्रा की भागदौड़ से थोड़ा सा वक्त चुराते हैं और शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों और आपके पसंदीदा नगमों का ये सुरीला सफ़र हेलो मेरी पसंद।
3: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे
3: हैं? मैडम, मैं प्रवीण पवार बात कर रहा हूँ वाशिम से, महाराष्ट्र।
2: अच्छा, आप महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। आप क्या करते हैं?
3: हम सलून का काम करते हैं, वाशिम में दुकान है हमारा।
2: अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी?
3: सलून की दुकान है।
2: अच्छा, ओके, हेयर कटिंग करते हैं आप?
3: हाँ, हेयर कटिंग का
2: जी। तो आपको गीत संगीत का शौक है?
3: हाँ, शौक है, बहुत दिनों से शौक है।
2: आप आकाशवाणी सुनते हैं?
3: कार्यक्रम सुना था, उस दिन आपका कार्यक्रम सुना इसलिए कॉल लगाया।
2: अच्छा, तो आप आकाशवाणी आगरा के प्रोग्राम सुनते हैं?
3: हाँ, मोबाइल पर सुनते हैं। पहले रेडियो था हमारे पास, दिनकर फिलिप्स
2: जी।
3: हाँ, तो आप मोबाइल पे ऐप पर सुनते हैं आपके कार्यक्रम?
2: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। तो आज आपने कौन सा गीत सुनने के लिए कॉल किया है?
3: हमें आज गीत सुनना है तुमसे मिले दर दिल में उठा दर्द करारा।
2: ठीक है, हम आपको ये सॉन्ग आपकी पसंद का सुनवाते हैं, आगे भी कॉल करते रहिएगा।
3: ठीक है, ठीक है,
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद मैम।

0: हेलो,
1: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
0: मैं रितु शर्मा बोल रही हूँ।
1: दीप्ति, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
0: मैं आगरा से ही बोल रही हूँ। अभी
1: अच्छा, और आप क्या करती हैं?
0: तो मैं एक हाउस वर्कर ही हूँ,
1: अच्छा,
0: हाउसवाइफ।
1: जी। तो आप पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती होंगी, राइट?
0: हाँ जी,
1: और आपके क्या-क्या शौक हैं, उनको पूरा कर पाती हैं?
0: हाँ कर पाती हूँ।
1: जी, क्या-क्या शौक हैं आपके?
0: मेरा शौक घूमने का।
1: अच्छा, इसके अलावा गीत संगीत का शौक रखती हैं?
0: हाँ,
1: जी, तो आज आपने कौन सा गीत सुनने के लिए कॉल किया?
0: तुझमें रब दिखता है का टाइटल ट्रैक।
1: ओके, ठीक है, हम आपको आपकी पसंद का सॉन्ग सुनवाते हैं और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा। धन्यवाद
0: ओके,
1: कॉल
0: धन्यवाद।
1: करने के लिए।

0: अगर आप अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो अपनी फरमाइश दर्ज कराने के लिए आप हमें हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0562-350-1852 और 0562-2970-337। तो अपनी पसंद हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपकी फरमाइश ही बनाती है इस कार्यक्रम को और भी खास। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अपने अगले श्रोता को।
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रही है?
1: मैं सरता सिंह बात कर रही हूँ आगरा से।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके क्या शौक है?
1: म्यूजिक मेरा शौक है।
0: म्यूजिक, आप गीत संगीत का शौक रखती है। कैसे आपका निकलता है, गुजरता है दिन?
1: नहीं, नॉर्मली तो काम वाम होता है, थोड़ा बच्चों का, घर का, उसके बाद जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनना।
0: जी, तो आप किस तरह के गीत सुनना पसंद करती हैं?
1: क्लासिकल जो गीत होते हैं, एकदम मध्यम आवाज में जो होते हैं ना, सॉफ्ट, एकदम जो हृदय को छू जाने वाले, मतलब मन खुश हो जाए, शांत, कोई लाउड जो स्पीकर वगैरह होता है उस तरीके का नहीं।
0: अच्छा, ओके। जी जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैं आज गीत सुनना चाहूंगी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: जी, बहुत अच्छा गीत है ये। ठीक है, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। आप आगे भी कॉल करते रहिएगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
0: मैम, मैं रूबी बात कर रही हूँ, ताजमहल
1: रूबी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
0: से।
1: अच्छा, और आप क्या करती हैं?
0: मैम कॉलेज चल रहा है अभी, मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर चल रहा है।
1: अच्छा, तो बीकॉम के बाद आपने क्या सोचा है, आप आगे क्या करेंगी?
0: मैम बीकॉम के बाद कोई सीए करने का सोचा है कि आगे सीए बनना है, इस लाइन में पढ़ाई करनी है।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। आपके क्या क्या शौक है?
0: थोड़ा सा लिखने का शौक है,
1: अच्छा, आप
0: गाने
1: लिखने
0: सुनने
1: का
0: का
1: शौक
0: शौक
1: भी
0: है।
1: रखती
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: अच्छी बात है। और गीत संगीत का शौक है आपको?
0: हाँ, बहुत सुनने का शौक है, गाने का नहीं है। जी,
1: जी, तो आकाशवाणी आगरा के प्रोग्राम्स आप सुनती हैं?
0: डेली सुनते हैं।
1: कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद है यहाँ का?
0: ये आता ना सुबह 11 बजे आज के कलाकार,
1: जी
0: और
1: जी
0: 11:30 बजे कुछ बातें कुछ गीत।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी, ये दोनों प्रोग्राम मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि इसमें फिल्म सॉन्ग भी आते हैं, थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं,
1: आपको
0: तो
1: नॉलेज
0: पता
1: भी
0: भी चलता
1: मिलती
0: है।
1: है।
0: जी,
1: जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: मेरा सॉन्ग है, मूवी है हमारी आपकी कसम, उसका गाना है जिंदगी के सफर में।
1: जी, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये तो। आपको आपकी पसंद का सॉन्ग सुनवाते हैं, और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ।
0: थैंक यू मैम।

0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं नागेश शुक्ला बोल रहा हूँ। मैम
0: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: आगरा से बोल रहा हूँ, सिकंदरा।
0: अच्छा, तो सिकंदरा में आप कहाँ रहते हैं?
1: मैम सिकंदरा में आवास विकास कॉलोनी में रहता हूँ।
0: अच्छा, तो नागेश जी आप क्या करते हैं?
1: मैम पेशे से फोटोग्राफर भी हूँ और थोड़ा सा ऑनलाइन का भी काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा, ऑनलाइन में वीडियो एडिटिंग का।
1: जी जी
0: आप इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? आई मीन कोई शौक, हॉबी?
1: पेंटिंग पेंटिंग
0: पेंटिंग आपकी
1: पेंटिंग
0: हॉबी है?
1: सॉरी पेंसिल ड्राइंग, पेंसिल वाली ड्राइंग।
0: स्केचिंग? अच्छा।
1: और इसके बाद शौक है, क्रिकेट का है, बैडमिंटन का है, और सिंगिंग का भी है, म्यूजिक सुनने का भी है।
0: काफी सारे शौक रहते हैं आप, तो खेलने के लिए टाइम निकाल लेते हैं आप?
1: हाँ निकल जाता है मैम आराम से, और राइटिंग का भी शौक है।
0: अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैम मेरे को सुनना है फिल्म तीसरी कसम का, कोई भी गाना सुना दीजिए, वैसे चलत मुसाफिर मोह लियो रे।
0: हाय हाय, बड़ा अच्छा सॉन्ग है ये तो।
1: ये
0: ठीक
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा लगता है
0: हाँ जी, हाँ
1: और
0: जी
1: ये हमें ग्रामीण अंचलों से जोड़ता है, साथ ही साथ ग्रामीण जो भाषाएं होती हैं उनके
0: जी
1: बारे में थोड़ा सा और हमारी परंपराओं के बारे में भी बताता है।
0: हाँ, हमारी परंपराएं तो गांव में ही बसती हैं
1: जी।
0: जी। ठीक है, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं और आप हमें आगे भी कॉल करते रहिएगा,
1: जी जी
0: बने रहिएगा आकाशवाणी
1: थैंक
0: आगरा के साथ।
1: यू सो मच।
0: थैंक यू।

0: इसी के साथ दोस्तों, आज के कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपकी पसंद के गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और कुछ खूबसूरत यादों को फिर से ताज़ा किया होगा। आप अपनी पसंद, अपनी फरमाइश और अपने प्यारे संदेश हमें भेजते रहिए, क्योंकि हेलो मेरी पसंद की असली रौनक आप ही से है। जल्दी ही फिर मिलेंगे सुरों की नई महफिल और आपकी नई पसंद के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और संगीत से जुड़े रहिए।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित जसराज से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग धूलिया मल्हार, तो आइए सुनते हैं पंडित जसराज से राग धूलिया मल्हार में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे पंडित जसराज से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग धूलिया मल्हार। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारे ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार सुनेंगे। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए

0: हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिंचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance